सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्व

आग तक पहुंचेगा, दोनों सेम होगा, तो ऐसी स्थिति में जी मिचलाने वाली स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस से जूझने वाले आप अकेले इंसान हैं या बहुत रेयर ये स्थिति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। साल 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी स्थिति है जो हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुमान आप ये नहीं लगा सकते हैं कि कौन कब इसकी चपेट में आ जाएगा और इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मोशन सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता और ये सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद होता है जो बैलेंस ऑर्गन यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर ना एक खास तरह का सेंसर होता है जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं और ये रिसेप्टर्स बाहरी और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है और जब जानकारी पहुंचती है और अलग अलग जानकारी पहुंचती है तो दिमाग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है और जब दिमाग को ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तो गड़बड़ी हुई है, कुछ जहरीली चीज आ गई है, कुछ हानिकारक चीज आ गई है, तो हमारा दिमाग कहता है कि उल्टी करो और उसे बाहर निकालो। और सफर के दौरान ये उल्टी वाली समस्या या फिर ऐसी परेशानी सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को ना ये यात्रा शुरू होते ही बेचैनी महसूस होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में ये परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है और कुछ लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं या फिर गाड़ी के अंदर दुर्गंध फैली होती है तो भी लोगों में ऐसी परेशानी आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड होता है और सफर के दौरान जब ये फ्लूइड हिलता है तो उसमें पैदा होने वाली कंपन यानी कि वाइब्रेशन गर्दन तक पहुंचती है और गर्दन के मूवमेंट के साथ वो कंपन खोपड़ी तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी भी हो सकती है। तो मोशन सिकनेस का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड में कंपन होता है तो भी उल्टी की समस्या हो सकती है। और पहला कारण तो बिल्कुल था ही कि जो संतुलन होता है वो ठीक ठीक नहीं बैठता, दिमाग को आंखें कुछ और बता रही होती है और कान कुछ और बता रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से परेशानी देखी जा सकती है। और इन सब के अलावा आप जब सफर पर निकलते हैं तो उस दौरान आपके पेट की स्थिति कैसी है ये भी मोशन सिकनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाली पेट सफर करते हैं तो फिर आपके पेट की वेगस नर्व जो कि हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है और फिर इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और आपको चक्कर जैसा महसूस होता है। और अगर आप खाली पेट नहीं है, आपने पूरा भरकर भोजन किया हुआ है यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपने खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद आप सफ़र पर निकल गए हैं तो ऐसे लोगों में भी उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप सफ़र पर निकले तो हल्का खाना ही खाएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट जाएं या फिर बहुत ज़्यादा खा लें, हल्का खाकर निकलें तो आपके पेट में भी ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मोशन सिकनेस के बारे में जो अभी तक हमने समझा वो ये कि ये सफर के दौरान होता है, लेकिन कई बार ये सफर से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती बल्कि दिमाग की किसी बीमारी या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है ऐसा कुछ। कुछ मामले में तो मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे सफर भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं या फिर आप सारी सावधानियां अपना रहे हैं इसके बावजूद आपके अंदर मोशन सिकनेस जैसी बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी ज़्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लेना भी ज़रूरी होता है, कम से कम आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं है। और अब तक हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारी के कारण के बारे में बातें की, अब हम आपको बताते हैं कि सफ़र में उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि भारी भोजन से बचना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए और अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर ज़रूरी हो तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है, लेकिन
डॉक्टर की सलाह के बाद ही। और ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में नहीं सोएं अगर आपको पहले से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर आपको मोशन सिकनेस वाली परेशानी है तो सफ़र के दौरान आप अपनी नज़रें नीचे करके फ़ोन न चलाने लग जाएं, या फिर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं

0: सफर के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि सफर के दौरान आपको किताब पढ़ने से भी बचना होगा, ताकि आपकी आंखें आपके दिमाग को संकेत दे पाए कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं, और आपके कान जो आपके दिमाग को संकेत देंगे, वो संकेत मिलेंगे तो आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने शरीर की स्थिति को भी स्थिर रखें, यानी कि सिर, कंधे, कमर और घुटने की हलचल थोड़ा कम करें, और अगर आपको परेशानी हो तो आप आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें या फिर सामने की सीट चुनें, ये आपकी परेशानी को थोड़ा कम करेंगे। और अगर संभव हो तो खुद ही आप ड्राइव करें, यानी कि वाहन चलाएं, तो इससे तो बिल्कुल आपका दिमाग, आपके कान, आपकी आंखें, आपके दिमाग तक यही संकेत पहुंचाएंगे कि हमारा शरीर मोशन में है, तो संकेत या संतुलन की वजह से तो मोशन सिकनेस आपको नहीं होंगे फिर। और इसके अलावा निकोटिन से बचें। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें उल्टी की संभावना ज़्यादा होती है। और संगीत तो सबसे अच्छा साथी होता है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, संगीत सामने आता है और कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हल्का और सुखद संगीत सुने तो आपको सफर के दौरान मोशन सिकनेस की परेशानी कम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आता है कि क्या महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा होती है? तो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है, और इसके पीछे शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना यह है कि जो महिलाओं की जीवन शैली होती है वो पुरुषों से काफ़ी अलग होती है, और यही एक वजह होती है कि महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है महिलाओं का पोस्चर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर के कामकाज बहुत देर तक खड़ी रहकर करती है, खासकर रसोई में जब वो खाना बनाती है तो लगातार खड़ी रहती है, तो लगातार खड़े होने से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नियमित रूप से होते हैं, और ये भी एक अहम वजह है मोशन सिकनेस के लिए। और पीरियड्स के दौरान तो शरीर में नमक, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से भी मोशन सिकनेस जैसी परेशानी। तो मोशन सिकनेस के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की, उम्मीद है कि आप, और अगर आपको ऐसी ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आज जिन भी बातों के बारे में मैंने आपको बताया उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और मोशन सिकनेस जैसी परेशानी से आप खुद को बचा पाएंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए, और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि आपके रेडियो दोस्त और होस्ट उमा को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अपनों का रखे खास ख्याल। नमस्कार। स्वस्थ रहे हम।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
0: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
2: जी।
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
0: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: विमलेश जी, लेन देन तो होता था लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरी गांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे

0: वे अपने उत्पाद भी वहाँ लाने लगे।
1: जी, फिर वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत संगीत नृत्य और विशेषकर मोरी गांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया कहाँ हो भैया?
2: यही दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा।
4: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिता

0: आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
2: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
2: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
2: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
2: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
2: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
2: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
1: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
2: थैंक यू।
0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
2: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
1: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
2: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
2: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
2: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
0: हाँ।
2: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
3: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
2: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
0: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
1: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
0: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
2: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
2: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
2: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
2: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
2: हाँ।
0: उत्सव

0: समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
1: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
2: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग.
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान.
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ. सुनो सुनो एक

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, स्वागत है आपका उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोताओं और हमारे किसान भाई और बहनों, आपके लिए हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में बहुत ही खास बातें लेकर आते हैं। और जहाँ तक बात होती है फसलों की, तो फसलों के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देते हैं, लेकिन अगर खेती में उपयोग आने वाले यंत्रों के बारे में अगर हम जानकारी आपको ना दें तो थोड़ा अधूरापन रह जाता है। जी हाँ, आज हमारा विषय है, बिल्कुल हम आपको बता दें कि ट्रैक्टर

0: सर्विसिंग के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर ये विषय लेकर आए हैं हम। और हमारे साथ हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी, और ये आज के हमारे विशेषज्ञ हैं, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और साथ ही सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर जो भी या फिर किसान भाई हमारे ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो ड्राइवर है वो यूज़ कर रहा है किसान ट्रैक्टर, तो चलाने से पहले उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए किसान भाइयों, अगर आप ट्रैक्टर रखे हुए हैं, अगर इसका उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी ट्रैक्टर को आप चला करके फार्म पर आप यानी कि घर पे लाते हैं, तो उसमें आप ये ध्यान देना है कि कल जो चलने वाली है ट्रैक्टर, उसके लिए हम तेल आज ही भर लें शाम में।
0: जी,
1: अगर आज तेल भरा हुआ रहेगा तो कल आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ट्रैक्टर धूल में चला है, तो आप सबसे पहले प्री एयर फिल्टर होता है जो शीशा वाला ऊपर पे लगा हुआ, उसको आप पहले खोल करके शाम में ही ट्रैक्टर जब बंद कर रहे हैं तो उस समय उसका धूल जो है कपड़ा से मैंने उसको साफ कर लीजिए, और साफ करके उसको लगा दीजिए। और उसके बाद मैंने इतना काम करके रखने के बाद, फिर जब आप सुबह ट्रैक्टर चलाने के लिए जब आप ने शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले डिपस्टिक लेवल होता है एक, जो वाइल को जांचता है। तो वाइल में एक हाई रहता है, एक मीडियम रहता है, एक लो रहता है। तो ये जो आपको वाइल दिया हुआ है इंजन वाइल, वो आपको मीडियम लेवल पर है कि नहीं। अगर कम है तो उसमें आप मोबिल कुछ दीजिए, जो जिसको आप लुब्रिकेंट बोलते हैं, इंजन वाइल बोलते हैं, उसको आप दीजिए, वो लेवल को मेंटेन करिए। नहीं तो आपका क्या होगा कि वाइल कम होने के चलते अंदर का पार्ट जो महंगा होता है वो घिसेगा। और डीजल तो आप शाम में दे ही दिए हैं, और कुछ जगह है जबकि एक फ्रंट व्हील है, तो इस टाइप का आप वहाँ पर ग्रीस गन, एक ग्रीस गन जरूर रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इस ग्रीस गन इक्विपमेंट को आप रखते हैं, आप इसमें ग्रीस डाल करके उसके निपल में लगा करके आप उसको प्रेशर से ग्रीस, यानी कि 5 सेकेंड के अंदर आप ग्रीसिंग कर सकते हैं एक बैरिंग को।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आजकल का जो बैरिंग आता है वो पूरा लॉक रहता है चारों बगल से, उसको खोल करके भी आप ग्रीसिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रीस का नोजल लगा हुआ है तो गन से आप बहुत अच्छा और कम समय में आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, जो कि ग्रीस गन से ही हो सकता है। तो वैसे जगह पर ग्रीस गन करें। उसके बाद एक आप बोनट को निकाल करके आप उसमें जो आप डाले हुए हैं रेडिएटर में वाटर, उसका लेवल देख लें। देखिए ट्रैक्टर में बहुत लोग क्या करते हैं कि रेडिएटर को खोल के रखते हैं कि हमारा रेडिएटर गर्म होता है तो वाष्प निकलता रहेगा, ये कतई नहीं करिए। क्योंकि आप अगर रेडिएटर का अगर ढक्कन खोलते हैं तो उसमें वाष्प बन करके आपके वाटर का लेवल तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। उसको आप सीधा बंद रखिए। उसका ढक्कन अगर आप कम प्राइस का खरीदे हुए हैं तो हम आपको एक सलाह देंगे कि उसका ढक्कन आप कम प्राइस का नहीं खरीदें, क्योंकि उसमें एक स्प्रिंग रहता है, उसमें एक रबर रहता है, और वो स्प्रिंग के प्रेशर से उसको दबा के रखता है ताकि उससे एक भी वाष्प निकल नहीं सके। तो उसमें आपको पानी मेंटेन रहेगा, कभी पानी घटेगा नहीं, और आपका टेम्परेचर मीटर पर सही टेम्परेचर बताएगा। लेकिन आपको एक ध्यान देना है कि आप जब ढक्कन खोल के रखते हैं तो चापाकल से पानी भर देते हैं, ऐसे में आपका वाटर जैकेट में एक काई टाइप का जमेगा और वो आपको ठंडा कम करेगा। तो आप अभी प्रयोग करिए, जैसे आप कूलांट आता है मार्केट में, तो कूलांट 1 लीटर पर 3 लीटर जो है डिस्टिल वाटर मिला करके कूलांट को आप उसमें डालिए। कूलांट थोड़ा महंगा होता है, उसमें कूल करने का यानी ठंडा करने का बहुत ही क्षमता रहता है, तो उसको आप एक बार कूलांट यानी कि बना करके आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद अगर घटता है तो डिस्टिल वाटर उसमें देते रहिए। डिस्टिल वाटर हो या गंगा नदी का पानी हो या वर्षा का पानी आप डाल सकते हैं, वर्षा का पानी भी एक डिस्टिल वाटर होता है। तो आप अगर ढक्कन बंद रखते हैं, कहीं से लीकेज नहीं है, तो आपका ये जो वाटर लेवल है कभी नहीं बिगड़ेगा और आपका टेम्परेचर सही बताएगा
0: जी।
1: तो इस टाइप से आप चलाने से पहले लीड पंप, एक आता है लीड पंप होता है जो कि पंप से पहले, डीजल पंप से पहले स्टार्ट करने से पहले लीड पंप को ऊपर नीचे करके चला लें, ताकि आपका जितना भी फ्यूल पंप में जो पाइप है, प्रेशर पाइप है, उसमें तेल का प्रेशर अधिक हो जाए, और जब आप एक बार में इग्निशन की जब घुमाइएगा तो ट्रैक्टर आपको

0: किक में स्टार्ट होगा। अगर आप लीड पंप नहीं चलाए हैं तो हो सकता है कि दो या तीन बार आपको मारना पड़े। तो आप समझ लीजिए कि एक बार अगर आप बैटरी अगर चार्ज है, अगर आप 30 मिनट तक आप अगर सेल्फ लगाते हैं तो समझिए उस बैटरी को डिस्चार्ज माना जाता है। तो आप लीड पंप चला करके पहले प्रेशर जो रात भर में डाउन हुआ है पंप का, आप उससे अगर लीड पंप चलाते हैं तो अच्छा प्रेशर आपको मिलेगा और एक बार में इंजन स्टार्ट होगा।
1: जी, तो जैसे कि अभी हमारा विषय है कि ट्रैक्टर सर्विसिंग के समय किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, तो आप बताएं कि हमारे श्रोताओं को कि ट्रैक्टर सर्विसिंग कराने वो जाते हैं उस समय और उसके बाद या पहले उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
0: सबसे पहले आप 100 घंटा जब चलता है उसको मार करके रखें कि इतना किलोमीटर पर हम आप ऑयल चेंज किए हैं। तो सबसे पहले एक मोबिल फिल्टर और डीजल फिल्टर होता है, और मोबिल फिल्टर और डीजल फिल्टर सीधा चेंज हो जाता है, और आप उसमें मोबिल उसको सबको ड्रेन कर दीजिए, सब बहा दीजिए नीचे से। उसके बाद आप उसमें सही ग्रेड का जो कंपनी रिकमेंड किया है आप उसी सही ग्रेड का उसमें आप इंजन ऑयल डालिए। इंजन ऑयल डालने के बाद आप एक एयर फिल्टर होता है जिसमें कि ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर, पहले तो प्री एयर क्लीनर हम आपको साफ करने बताए थे, अब उसमें आपको प्री के बाद जो होता है एयर का जो फिल्टर होता है वो वायल बाथ टाइप का है। तो उसमें वायल में एक डुबा हुआ एक जाली नुमा फिल्टर होता है, उसके लेवल उसमें गंदगी आकर के कोई भी धूल वाला हवा आकर के पहले बाथ करके फिर अंतर में पिस्टन पड़ जाता है, तो सारा गंदगी उसी मोबिल में रहता है। तो उस मोबिल को सीधे बदल देना है आपको, और जो लेवल है उसमें उतना लेवल को मेंटेन करते हुए एक नया मोबिल डाल करके, और उसको थोड़ा सा यानी कि पेट्रोल या कोई किसी भी एक आता है पेंट में मिलाने के लिए एक वायल आता है, उससे भी आपको जाली को साफ करके और थोड़ा सा हवा मार करके उसमें उसको लगा दीजिए, और वो आपको एयर क्लीनर आपको सही हो गया और आपको मोबिल भी सही हो गया और फिल्टर भी सही हो गया। और एक होता है गियर वायल का लेवल देख लें, गियर वायल अगर कम हो गया है तो उसमें डालें, क्योंकि आजकल पावर स्टीयरिंग का जो इंजन आया है उसी वो सब काम करता है, गियर का हाइड्रोलिक काम करता है, तेल कम होगा तो हाइड्रोलिक काम नहीं करेगा। एक होता है कि अगर पावर स्टीयरिंग का ट्रैक्टर है तो उसमें आप एक स्टीयरिंग वायल आता है, अगर आप वो स्टीयरिंग वायल उसमें उसका भी लेवल देखें, उसमें स्टीयरिंग वायल अगर डाला हुआ है सही लेवल पर है तो आप उसको स्टीयरिंग आपका सही काम करेगा, क्योंकि अगर पावर स्टीयरिंग का है तेल कम हो गया है फिर भी घुमाते हैं तो उसका बॉकेट कटने के बाद आपका स्टीयरिंग का जो सिलेंडर है वो लीक करेगा, और स्टीयरिंग सिलेंडर का कोई भी किट रिपेयर के लिए नहीं आता है तो आपको सीधे रिप्लेस करना पड़ेगा और उसका प्राइस बहुत है। तो आप उसको रखरखाव रखिए, यानी मेरा कहना है कि अगर मरम्मत एवं रखरखाव का मतलब होता है कि अगर किसी भी यंत्र का अगर आप रखरखाव सही किए हुए हैं तो मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: जी, तो श्रोताओं आपने जाना, हमारे साथ थे इंजीनियर पंकज कुमार जी जो आपको विशेष जानकारी दे रहे थे ट्रैक्टर सर्विसिंग के समय किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक। आइए इसे

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखाड़ पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे कि हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और साथ ही हम आपको बता दें कि उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज एक विषय लेकर फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ, और विषय है गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओं, आज गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हम जानेंगे और इसमें कीट प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रंजीत कुमार, मैं आपको बता दूं ये सहायक प्राध्यापक हैं सहकनीय वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों के मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो ये बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
3: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं इस समय, उसमें से सबसे प्रमुख कीट है हीरक पृष्ठ पतंगा, दूसरी कीट है मा

0: तीसरा कीट तंबाकू की सुरी जिसको टोबैको कैटरपिलर कहते हैं, और चौथे कीट है जिसे हम चना के फली छेदक कीट कहते हैं। इन चारों कीटों का मुख्य रूप से गोभी वर्गीय फसल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, उसके बाद जो सलजम होती है, इन सारी फसलों पर इन कीटों का प्रकोप बहुतायत हमारे प्रदेश में देखने को मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों की हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किन किन कीटों से होता है इसे?
0: जी किसान भाई, आप सभी गोभी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और हमारे प्रदेश में बहुतायत तौर पर गोभी वर्गीय फसल उपजाई जाती है, और इसमें जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें तंबाकू की सुरी, हिरक पृष्ठ पतंगा और चने का फली छेदक कीट। सामान्य तौर पर आप सभी किसान भाई देखे होंगे कि कभी कभी पूरी पत्तियां काट करके कीट पूरा उसको पेपर जैसा बना देता है, पूरा छलनी जैसे जाली नुमा संरचना बन जाती है। ये शुरुआत की अवस्था होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है, पत्ता गोभी की अगर बात करें तो पत्ता गोभी में पूरे छेद छेद से बन जाते हैं और वो मानवीय उपयोग के लायक नहीं बच पाता है। फूल गोभी की अगर बात करें तो फूल गोभी के ऊपर इन्हीं सारे पिल्लू के द्वारा इस तरह से खार लिए जाते हैं कि वो खाने के अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसकी जो मादा होती है पत्तियों के ऊपर और गोभी की जो निचली भाग होती है, जो जमीन से थोड़ा जड़ से ऊपर की भाग होती है, उन पर ये मादा अंडा देती है। अंडा देने के 4 से 5 दिन के बाद ये पिल्लू बन जाते हैं, और पिल्लू की जो अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा क्षतिकारक होती है और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है और उनको मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और इनकी पिल्लू उस इस तरह से नुकसान करने लगती है, और साथ ही साथ उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो मलमूत्र वो पिल्लू त्यागते हैं, उस गोभी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे देखने में भी खराब दिखने लगता है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये पिल्लू कोसा की अवस्था में आते हैं तो मिट्टी के अंदर कोसा की अवस्था में या सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं और बाद में फिर तितली बन करके निकलती है। इस तरह से उनके जीवन चक्र चलते रहते हैं। अगर हम बात कर लें कि हिरक पृष्ठ पतंगा का, तो किसान भाई सबसे बढ़िया पहचान इसकी ये है कि हिरक पृष्ठ पतंगा के जो व्यस्क कीट होता है नर और मादा, इसके पीठ पर चमकती हुई धारी बनी रहती है। आप उसे गौर से अपने खेतों में देखेंगे तो ये लंबी लंबी सी जो व्यस्क है इसके पीठ के ऊपर चमकता हुआ पीले रंग का धारी बनी रहती है। भूरे रंग के कीट के ऊपर पीले रंग की धारी बनी रहती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। और तंबाकू की सुरी की बात करें तो इसके जो व्यस्क कीट होते हैं, इसके पंखों के ऊपर गोल गोल संरचना बनी रहती है, जो धूसर काले रंग के होते हैं और उस पर पीले चमकीले रंग की गोल संरचना बनी रहती है, तो इससे इन कीट की पहचान कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि कौन कौन से कीट जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की, तो गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें हम?
0: गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन करने से हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो बिचड़ा गोभी के गिराए, उसी समय सर्वप्रथम बीज का शोधन करें। बीज का सामान्य तौर पर हमारे किसान कवकनाशी, फफूंदनाशी दवाइयों के द्वारा बीज का उपचार कर लेते हैं, बीज का शोधन कर लेते हैं। हम किसानों को आज इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि गोभी के बीज को कीटनाशी रसायन के द्वारा भी शोधित किया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया जो प्रयोग करने के लिए आता है, गाउचो नाम की एक दवाई होती है, 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से मिला करके उसे हम बीज का उपचार करके अगर लगाएं तो स्वस्थ हमें पौधा तैयार मिलेगा और फिर उसे हम खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई इन बात का ध्यान रखें, और उसके बाद जब पौधे को खेतों में लगा देते हैं तो लगाने के बाद आप एक फेरोमोन ट्रैप होती है जिसको गंध प्रफास कहते हैं, इन कीटों को जो मैंने नाम आपके समक्ष बताया, इन कीटों के गंध प्रफास बाजार में उपलब्ध है, इसको आप खेतों

0: में प्रयोग करेंगे तो इससे आपको पता चलेगी कि किस समय में कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है और उसके हिसाब से आप कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो ये कुछ बातें हैं इनके समेकित कीट प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, अगर मैं इनमें प्रयुक्त होने वाली कीटनाशी रसायन और पेस्टिसाइड के बारे में पूछूं तो कौन कौन से हैं वो भी बता दें।
0: जी, सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि किसान कोई भी कीटनाशी रसायन ले आकर के छिड़काव कर देते हैं। हम किसान भाई आप सबको ये सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हीं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें जिसको वैज्ञानिक के द्वारा अनुमोदन किया जाता है और जितनी मात्रा में अनुमोदन की जाती है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि कीटनाशी रसायन की कम मात्रा और ज्यादा मात्रा दोनों ही घातक होती है। अगर कुछ आपके समक्ष हम बात करें कि कौन कौन से कीटनाशी रसायन है जिसका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है जो हमारे वातावरण के लिए सुरक्षित हो, हमारी फसल के लिए सुरक्षित हो, हमारी मृदा के लिए, हमारी वायु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, तो इनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे फ्लूबेंडिया माइट 39.5 SC के नाम से एक कीटनाशक रसायन आती है जो बाजार में फेम के नाम से मिलेगी। 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई नोवा ल्यूरान के नाम से बाजार में मिलती है, इसको आप 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी दवाई क्लोरांट्रा नीली प्रोले जो कोरोजन के नाम से बाजार में मिल जाएगी, इसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। उपयुक्त कीटनाशक रसायनों के जो बाजारू नाम हम आपके समक्ष बताए हैं आपके उदाहरण के तौर पर ताकि आपको खोजने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर बायो पेस्टिसाइड का निर्माण करके उसको आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नीम की पत्ती है, नीम का तेल है, जिसको आप पीस करके, नीम की पत्ती को पीस करके उसको पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो जो भी कीट है उन कीट का प्रकोप आपकी फसल में नहीं आएगा। दूसरा है नीम का तेल, नीम का तेल 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करने से ऐसा देखा गया है कि कीटों का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है और ये आप अपने खेतों में घरों में तैयार कर सकते हैं।
1: तो ये कुछ बातें हैं गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन को लेकर जो कि आपको ध्यान रखना है इन बातों पर किसान भाइयों। तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा आज के इस वार्ता से और इसके साथ ही अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: या ना।
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
8: See you at the vaccination center soon.
0: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव

प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ

0: रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए, हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थे या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतनी खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा। नहीं, ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है।

आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं है, आप बिल्कुल पतले नहीं है, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट
लॉस कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज़ें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ

0: एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं, आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं। तो अपने आसपास के लोगों को देखिए, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है। सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
1: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए, तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वही पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमिथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब 1 किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है, और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वेराइटी

है JS335, यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो है वो मैक्स 450 है जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं धान की सीधी बुआई पर खास चर्चा, और इस विषय को हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर एके मौर्य, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान केवीके सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि धान की सीधी बुआई की जरूरत क्यों पड़ी?
1: धान की सीधी बुआई की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा का पानी और सिंचाई दोनों के जो है, सिंचाई का पानी भी कम हो रहा है, बरसात भी हमारी अनियमित हो रही है। इस वजह से हमें जो है धान की सीधी बुआई की आवश्यकता पड़ी। साथ साथ क्या है कि अगर हम रोपाई भी से अगर हम धान की अगर उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ रोपनी बोलते हैं, तो एक किलो चावल पैदा करने में लगभग जो है हमको 5,000 लीटर पानी खर्चा होता है, जबकि अगर हम धान की सीधी बुवाई से करते हैं तो उसमें 1200-1400 लीटर पानी लगता है एक किलो चावल पैदा करने में। अगर एक शब्द हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रोपाई के समय कुल धान का जो पानी लगता है उसका एक तिहाई पानी जो है कि रोपाई में ही लग जाता है,

बचत ग्रुप में और जुताई या कादों के रूप में। उसके अलावा इसके में अगर हम बात करें तो इसके उत्पादन खर्च में भी हमारी कमी आती है। अगर हम उसको देखें तो चाहे वो पानी के रूप में हो या उसमें हमें लेबर के रूप में हो या उसमें डीजल के रूप में हो, इस सब को अगर देखते हैं तो उसमें हमारे उत्पादन खर्चा में कमी आती है। साथ साथ जो है इसमें जो मीथेन गैस है उसका इमिशन भी कम होता है धान की सीधी बुवाई में अगर तुलना की जाए तो रुपाई से। रुपाई विधि में इमिशन गैस की ज़्यादा इमिशन होता है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो इस तरह से हमें जो है धान की सीधी

0: में बात करें तो उसमें दो विधियां हैं, एक नमी विधि, दूसरा सूखा विधि। मत और अगर हम गीली विधि की बात करें जिसमें हम कादो करके, अगर बरसात अगर शुरू हो गई, अगर हम इस शब्द में कहें कि अगर बरसात शुरू हो गई तो स्टिपनी के लिए भी एक दूसरी विधि रखी गई है जिसको हम लोग ड्रम सीडर से बुवाई करते हैं। तो नम विधि क्या है जिसको हम लोग बत्तर बोलते हैं। नम विधि में खेत की मतलब कि पहले सिंचाई कर लेंगे, उसकी तैयारी कर लें, और जब हम बुवाई करें उस समय एक अच्छी नमी होना चाहिए ताकि जर्मिनेशन एक अच्छा हो जाए, और बुवाई के लिए हम लोग मल्टी क्रॉप प्लांटर का प्रयोग करेंगे। और सूखी विधि में क्या है कि उस समय जो है खेत में नमी नहीं होती है, सूख हम बुवाई कर देते हैं, उसके बाद में सिंचाई करते हैं, या मौसम क्या का इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो, तो बारिश के उपरांत जो है वो जम जाएगा। तो सूखा विधि यह है, सूखा विधि में जब भी बुवाई करेंगे उसे नमी बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम सूखा हम करेंगे, और बुवाई के बाद में हम सिंचाई करेंगे तब उसका जो है जमा होगा, उसमें जर्मिनेशन होगा। इस तरह से हम लोग अपने दोनों जो है सूखा विधि की दो तरीका है, जिसमें नम विधि जिसको बत्तर बोलते हैं, दूसरा सूखा विधि कि जो एकदम सूखा हम बोते हैं उससे बुवाई का। लेकिन बेहतर होगा किसानों के लिए कि एक नम विधि जिसको बत्तर बोलते हैं उसी विधि का ही हम लोग प्रयोग करें, वो किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसीलिए कहा जाता है धान की सीधी बुवाई वहाँ करना चाहिए जहाँ पर 3 से 4 पानी सिंचाई की आवश्यकता के लिए पानी उपलब्ध हो, इसीलिए नम विधि ही अच्छी है बुवाई के लिए। अगर बरसात अगर शुरू हो गई है उस कंडीशन में, अगर मानसून आ गया है, हमको धान की सीधी बुवाई करना है, तो जैसा कि हम बताए कि एक स्टिपनी के रूप में हमको ड्रम सीडर से बुवाई करना चाहिए। ड्रम सीडर में क्या है कि एक जो है डिब्बा बना हुआ एक मशीन, छोटी से बहुत छोटी मशीन है, वो आदमी एक किसान अपने आराम से एक हाथ से खींचते हुए चला जाएगा, और औसतन 1 एकड़ बुवाई में 30 से 35 मिनट लगता है और बुवाई कर देंगे। उसमें क्या है बीज को हल्का सी स्प्राउटेड करके और हल्का कादव करके बुवाई कर देंगे, एक स्थान पे 3 से 4 बीज गिरते चला जाएगा और लाइन में बुवाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग उसमें कर लेंगे।
1: जी, और इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, उर्वरक प्रबंधन की, और सिंचाई कैसे करें उसकी भी जानकारी दें डॉक्टर साहब।
0: धान की सीधी बुवाई में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है खरपतवार प्रबंधन। जिन किसानों ने अगर खरपतवार का अच्छे से अगर नियंत्रण कर लिया है तो उनको पैदावार लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें बहुत ही लाभ उनको मिलेगा। जो किसान कर भी रहे हैं वो ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, जैसा कि अब बहुत सारी परियोजनाओं द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सबौर ने इस तरह के जो है धान की सीधी बुवाई शुरू किया है, किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं। इसमें धान की सीधी बुवाई के बाद अगर हम ये नम विधि से अगर लगाते हैं और मानसून आने के पहले अगर लगाते हैं, तो बोने के तुरंत बाद तो हम पेंडी मेथिलीन का जो है 1 हेक्टेयर में 1 किलो AI अगर 30% जिसे आ रहा है तो 1 हेक्टेयर में 3.25 लीटर का छिड़काव करेंगे बोने के तुरंत बाद। लेकिन ये मानसून आने के पहले पहले करने की आवश्यकता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर हम इस दवा का छिड़काव कर दिए हैं और मानसून आ गया या सिंचाई कर दिए हैं तो ये पेंडीमेथ्रीन जर्मिनेशन पर बुरा असर डालेगा। इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि जो है धान की सीधी बुवाई में प्री इमरजेंस के रूप में हम खरपतवार नाशी का प्रयोग न करके, शाकनाशी का प्रयोग न करके, हम बुवाई के 15 से 18 दिन पर दो दवाओं का प्रयोग करें। दो हमारे जो हर्बिसाइड है उसका प्रयोग करें, एक है बिक्सपायरीबैक सोडियम, जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़े पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके लिए बिक्सपायरीबैक सोडियम जो बाज़ार में 10% पर उपलब्ध है, 1 एकड़ में 100 ml का छिड़काव करें। अगर खेत में अगर मोथा है तो मोथा के लिए भी जो है हम एक आता है पाराजो सल्फ्यूरान, बाज़ार में कई नाम से आते हैं, और उसको जो है ये भी 10% का आता है, 1 एकड़ में 80 से 100 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। अगर चौड़ी पत्ती सक्रिय पत्ती वाले साथ में अगर मोथा ये सब घास अगर मिली हुई है तो दोनों दवा को बिक्सपायरीबैक सोडियम और पाराजो सल्फ्यूरान को एक ही पानी के टैंक में मिलाकर साथ में हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ड्रम सीडर्स भी लगाए हैं। ड्रम सीडर में तो बुवाई के समय कोई भी दवा बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर बुवाई के समय अगर पेंडामेथ्रीन या कोई गलती से इसमें दूसरी भी दवा का डालता फिर इमरजेंसी रूप में तो जर्मिनेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें बुवाई के 15 से 18 दिन बाद ये बिक्सपायरीबैक सोडियम और पाराजो सल्फ्यूरान खरपतवार के देखते हुए इसको छिड़काव कर देंगे 15 से 18 दिन पर, पानी अपनी आवश्यकता अनुसार। सिंचाई जैसा कि कहे धान की सीधी बुवाई में किसान के पास में 3 से 4 सिंचाई की व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। एक तो बुवाई के पहले जो नम विधि जिसमें हम बत्तर बोलते हैं, बुवाई के पहले एक सिंचाई करके हम खेत की तैयारी कर लेंगे।

उचित नमी पर, अच्छी नमी पर हम बुवाई करेंगे। उसके बाद जैसे जर्मिनेशन हो गया खेत को देखते हुए 8 से 10 दिन पर फिर दूसरी सिंचाई कर देंगे। इस तरह मौसम को देखते हुए हमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता शुरू में पड़ सकती है और उसके अलावा भी बाद में हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई देते जाएंगे। रही बात हम कितना खाद डालें, खाद में अगर हम ऊपरी ज़मीन वाले हैं और कम अवधि वाले प्रभेद हैं तो उसमें हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उस पर प्रयोग करेंगे। अगर हमारे उन्नतशील और अधिक उपज देने वाली प्रभेद हैं तो उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास का हम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। लेकिन जो हमारे सुगंधित धान हैं उसके लिए 80 किलोग्राम, उसमें भी जो सुगंधित में जो बौनी वाले हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। और सुगंधित में जो लंबी किस्म वाले हैं उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम हमारा पर हेक्टेयर की दर से पोटास का व्यवहार करें। और इसमें

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
1: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
2: हाँ, बिल्कुल। जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछुआ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
1: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
2: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई, उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जन्म

0: एक किनारे किनारे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे, तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
1: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
0: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो, गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नज़र आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
1: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरी तिले को कैसे नियंत्रण कर लें, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है वो भी, हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।

0: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
0: जी मैम। मैम तिल दो तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
1: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जाकर के हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है। काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल के अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था, मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
0: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
1: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
0: जी मैम। तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
1: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
0: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है, लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में। भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है, और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज़ को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं अपने टीनेज में हैं या

फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है, उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रो मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रो मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रो नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना आज के समय में भी, आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना, तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो, लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना, वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है, तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका ना, नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री के पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना, तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है, और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है, ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक। मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को, और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है, और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है। आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है, बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा।

ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली। और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है। और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को, यानी कि टेढ़ी लकीर को, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए और कहते हैं कि किताबें

0: सबसे अच्छी साथी होती है। तो जरूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम, आपको अच्छा लगा होगा। और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की, उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है। कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें। तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
12: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के 8 साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम

0: होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फायदा पता चलेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6 साल 7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले या आप 1-2 फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं अपने गृह वाटिका में आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हमारा एरिया में हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, न कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें। अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो और ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हो 7 साल 8 साल 10 साल के बाद वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें। दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं, तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2-3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है। और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है, हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
1: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस
0: कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे। दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए। इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है।
1: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान किन किन बातों को ध्यान रखने की, बात तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसके किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।
0: सबसे पहले मैं बता दूं कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सभी किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में किन किस्मों का ज्यादा डिमांड है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे बिहार में आम का ही अगर फसल लेते हैं तो इसमें मालदा, जरदालू और गुलाब खास, कृष्णभोग, बम्बई, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आम्रपाली, इन सब किस्मों की ज़्यादा डिमांड है, तो हमें इन किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह वाटिका में लगाना चाहते हैं तो वैसे फल वृक्षों का चुनाव ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर ज़मीन कम होती है गृह वाटिका में। अगर एक ही आम के पौधे बहुत फैल जाएंगे तो बाकी चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते, इसलिए उन जगहों में जहाँ के गृह वाटिका में आप लगाना चाहते हैं या 1-2 पौधे लगाना चाहते हैं, अगर आम की लगाना चाहते हैं तो उसमें आम्रपाली जो कि कम बढ़ती है, उसका फैलाव भी कम होता है, उन किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा वैसे फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, इन सब चीज़ों का आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं, और बगीचे भी अगर लगाना चाहें तो केला, पपीता में भी किस्मों का चुनाव आपको करना पड़ेगा और उन किस्मों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि हमारे क्षेत्र में कौन सा, हमारे क्षेत्र का जो जलवायु है किस किस्मों के लिए अनुकूल है, इसलिए इन बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेब बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपका क्षेत्र का जो जलवायु है वो सेब के अनुकूल नहीं है, इसलिए वैसे पौधों का चुनाव ना करें ताकि आपको फल ही ना दे। इसलिए अपने जलवायु के अनुकूल, अपने मिट्टी के अनुकूल और

0: अपनी स्थान विशेष जगह के कितना भी भूमि क्षेत्र है उसके अनुकूल तथा हमारे क्षेत्र में जिनका डिमांड है उसके अनुकूल आप फल वृक्षों का और उनके किस्मों का चुनाव करें। ये बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप 5 से 7 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी और आप नुकसान में रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और फल के मांगों को देखते हुए फल के पौधे लगाएं और 6-7 साल तक आप अगर अपने मेहनत को यूं ही गंवाना नहीं चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैम, जब बात होती है नए पौधे लगाने की तो उनकी विधि भी बहुत ज़रूरी होती है जाना, क्योंकि जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसकी विधि जानना ज़रूरी होता है। अगर विधि जान लेते हैं तो हम आराम से बनाते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे ही पौधे लगाने की विधि हम जानना चाहते हैं ताकि हम 6-7 साल बाद पछताए नहीं और हमें फल मीठे मीठे मिले।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, पौधे लगाने की वैज्ञानिक विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैडम पौधा मैंने लाया, बहुत अच्छे से पौधे थे, लगाया और 2 महीने के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया, वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है जब पौधे पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको लगाते हैं और उनको पता चलता है कि जो पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि पौधे जैसे कि आप फल वृक्ष, हमारे जलवायु की बात करूँ तो फल वृक्ष लगाने का समय हमारे यहाँ मध्य जून से लेकर अगस्त सितम्बर महीने तक लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो लगाने के पहले 1.5 से 2 महीने पहले इसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब जो भी मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसके एक नियमित नियत दूरी रहती है, कितनी दूरी पर आप पौधों को लगाएं। तो आप आम में जो ज़्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, और जो आप कम बढ़ने वाली किस्में हैं उसको 4 से 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, उसे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के पहले आपको गड्ढा करना है, जो गड्ढे की तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी जो करनी है आपको अप्रैल माह में शुरू कर देनी है। और अप्रैल माह में आप 1-3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा करें, या 8 मीटर की दूरी पर, या फिर आप 5 मीटर की दूरी पर करें, यह निर्भर करता है आप किन किस्मों को चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा करें, और जो गड्ढे की मिट्टी है उसको बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, गड्ढे को खुला छोड़ें। अप्रैल माह में धूप बहुत तीक्ष्ण होती है और जिसके कारण उस तीक्ष्ण धूप से जो गड्ढे के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और बाहर जो आपने मिट्टी निकाली है अगर उसमें भी कीड़ों के अंडे रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से वो कड़ी धूप में आप 3 से 4 सप्ताह उसको छोड़ दें, यूं ही खुला छोड़ दें। उसके बाद उस मिट्टी में आप, अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आप 30 से 35 केजी कंपोस्ट, 100 ग्राम फ्यूराडॉन 3 mg, और 4 से 5 केजी आप नीम या अंडी की खल्ली को लगाएं और डालें, मिक्स करें उसमें, और उसको मिक्स करने के बाद जो है उसको गड्ढे में भर दें। गड्ढे में भरने के बाद आप पानी से उसको अच्छी तरह से सिंचित करें गड्ढे को, ताकि वो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाए गड्ढे में, और जब पूरे अच्छी तरह से भींग जाए और बैठ जाए तो पुनः एक बार उसमें अच्छी तरह से सिंचित करें। जब दूसरी बार सिंचित करेंगे तो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाएगी, और उसके बाद ये ध्यान रहे कि मिट्टी को जो उसमें गड्ढे जो है उसके 3 से 4 इंच ऊँची तक वो मिट्टी रहे। उसके जब पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद जब दूसरी सिंचाई कर देंगे तब फिर क्या है, बीच में गड्ढा करके आप पौधे उसमें लगाएं और हल्के से दबा दें। ध्यान रहे कि बीच वाला भाग थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश होने वाली रहती है अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो बारिश के समय में उसके जड़ के आसपास जल का जमाव होगा जो कि नए पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। और मैं बता दूँ, किसान भाइयों अधिकतर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो पौधे खरीद के लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, उसके बाद गड्ढा लगाया, खाद डाला, गोबर डाला, तुरंत पौधे लगा करके पानी डाल दिया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही आप तुरंत खल्ली डाल के खाद डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे उसमें से गर्मी उत्पन्न होता है, और तुरंत अगर पौधे आप लगाए हैं तो जड़ के जलने की समस्या

0: रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आप एक महीने अप्रैल के महीने में गड्ढे की खुदाई करें, 3-6 हफ्ते उसको छोड़ दें जैसा मैंने बताया। उसके बाद से आप पौधे लगाएं, पानी 2 बार पानी डाल करके, हालांकि उस समय तक बारिश शुरू हो जाती है तो अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बारिश में पूरे होने दें, अच्छे तरह से मिट्टी बांटने दें और जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पौधे को लगाएं, पौधा आपका कभी नहीं मरेगा। और इस तरह से पौधे के लगाने की विधि है।
1: तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि क्षेत्र, मतलब हर किसानों को अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही पौधे का चयन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस तरह के उर्वरक देने चाहिए फल के पौधों को?
0: देखिए, पहले क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ, हमारा क्षेत्र जो है बिहार राज्य जो है उसमें आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, शरीफा, इन सब चीज़ों की खेती आराम से हो सकती है। अगर आपका कुछ हद तक कुछ हमारे कुछ एरिया में, जैसे सीमांचल एरिया में जहाँ की आर्द्रता ज़्यादा रहती है, वहाँ नारियल की भी खेती हो सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। इन सब की खेती आप चाहेंगे, सेब, खुबानी, आड़ू, ये सब लगाना, तो इन सब की खेती यहाँ संभव नहीं है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। अब रही खाद उर्वरक की बात, मैंने बताया कि जब पौधे आप लगा रहे हैं तो लगाने समय में आप कंपोस्ट डाले हैं, खल्ली डाला है और उसके साथ जो है ज़्यादा नहीं लगाते, इसमें 250 ग्राम ही आप DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं उसको डालें, और फ्यूराडोन मैंने बताया कि 100 ग्राम डालें, जो कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो थोड़ा सा मार देता है, वो ग्रब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना डालें। और अगले 6 महीने तक आप उसमें कोई खाद ना डालें।
1: अच्छा,
0: जब आप देखने लगे, मैं आम के को मुख्यतः बता रही हूँ, हालांकि सभी फल वृक्षों के जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, जैसे पपीता के अलग होंगे, अमरूद के अलग होंगे, आम के अलग होंगे, लीची और आम के लगभग समान होते हैं क्योंकि उनका, हाँ हाँ, मौसम्बी के अलग होंगे, नींबू के अलग होंगे, सभी पौधों के जो है वो उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। मैं आम और लीची को के बारे में भी बताऊंगी। अपने लगाने के 6 महीने के बाद आपको कोई भी उर्वरक नहीं देना है। जब 6 महीने के बाद, जैसे आपने जून जुलाई में लगाया, आपको ठंडी के सीजन तक आपको कोई उर्वरक नहीं देना है, लेकिन सिंचाई आपको नियमित रूप से करनी है। जब आप फिर फरवरी का महीना आता है तब उसमें नए कोपल फिर से आने शुरू होते हैं और तब आपको लगता है कि जड़ इसके अच्छी तरह से जम चुके हैं, फिर आप उसमें जो है वो पौधे उसमें जो है खाद और उर्वरक देना शुरू करें। 1 साल के पौधे में मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बताऊंगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए आप बहुत सारे उर्वरक यूज कर सकते हैं और सभी उर्वरक में इनकी मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए मैं किसी एक उर्वरक का नाम नहीं लूँगी। मैं उनके तत्व जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है उनके मात्रा के बारे में बताऊँगी। तो पहले साल में एक पौधे में आपको लगभग 60-70 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और 30-40 ग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से 40-50 ग्राम या 40-60 ग्राम प्रति वर्ष 1 साल के पौधे में पोटास की ज़रूरत होती है, और ये मात्रा जो है हम हर साल बढ़ाते जाते हैं। पहला साल इतना, दूसरे साल उसका दुगुना, तीसरे साल उस तिगुना, इसी तरह से 10 साल तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं और 10वें साल जो हमारी मात्रा होती है नाइट्रोजन की मात्रा 700-800 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 400-600 ग्राम और पोटास की मात्रा जो है वो 600-800 ग्राम प्रति पौधे होती है। और ये निर्भर करता है, अगर आपकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन में कम है तो थोड़ा सा आप हायर साइड जो ज़्यादा अधिकतम मात्रा है वो देंगे, अगर आपके यहाँ जो है नाइट्रोजन पोटाश की मात्रा मिट्टी में सही है तो आप उसको कम वाली मात्रा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका उर्वरक का उपयोग करेंगे और ये उर्वरक आप 2 भागों में बांट के दें, 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दें, तब आपका फलन भी अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार भी अच्छा होगा।
1: कहने का मतलब है कि जब, जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो हमने कम खाना देते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता और बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए। उसी प्रकार पौधों को भी आप, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी भी क्षमता या फिर उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है।

0: है आप उसी तरीके से उन्हें उर्वरक और खाद देते जाएं। और इसके बाद मैम, बागवानी जब हम करते हैं तो किस प्रकार के पौधों का चुनाव हमें करना चाहिए?
1: देखिए, पौधे लगाने की विधि तो मैंने बताई आपको, उसको उर्वरक में क्या, लेकिन पौधे किस तरह का चुनाव करें पौधे लगाने के लिए, मैं आम और लीची के संदर्भ में ही अभी बात करूंगी, क्योंकि सारी चीजों को एक साथ समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है।
0: जी जी।
1: तो मैं आम और लीची को ही संदर्भ में बात करना चाहूंगी। जैसे आम के पौधे आप लेने जाते हैं तो वो 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा। 3-4 फीट का पौधा होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पौधे जो हैं वो फील्ड में जाकर के लगने में परेशानी होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हों, स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ तक हो सीधा होना चाहिए, उसकी टहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जिन किस्मों का आपको आप लेना चाहते हैं पौधा उसी किस्म का होना चाहिए। तो इसके लिए मैं किसान भाई आपको ये कहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमेशा जो है रजिस्टर्ड नर्सरी या सरकारी नर्सरी से ही पौधे लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आम्रपाली ले गया और 7 साल के बाद पता चला कि उसमें जो है वो दूसरे किस्म के फल आ रहे हैं। तो किस्मों की सुनिश्चित करने के लिए आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधे लें, स्वस्थ पौधे लें, सही उम्र के पौधे लें, और तभी आपका जो है वो बगीचा में पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और
0: फल अच्छे
1: होंगे और आपके मनचाहे किस्म भी मिल पाएंगे।
0: तो बहुत अच्छी बात कही किसान भाइयों, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद मैम, जस्ट अब हमने बागवानी कर ली, पौधे लगा लिए हैं, तो इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाए?
1: देखिए, देखभाल में आपको सबसे पहले तो पोषण की है, फिर सिंचाई आती है। हमारे यहाँ जो है मध्य जून से लेकर के लगभग अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, उसमें आपको अलग से सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद अगर उस फल वृक्ष में जिसमें कि फल नहीं लगने शुरू हुए हैं उसमें आप नियमित रूप से पानी दें, सप्ताह में आप जरूर पानी दें। अगर ठंडे के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में आप हर सप्ताह में उसमें नियमित रूप से पानी दें, ताकि उसके उसको बढ़वार बनी रहे। जब आपका वृक्ष फलन में आ जाता है, यानी कि 4 से 5 साल के बाद वो फलन में आ जाता है लगभग, उस समय आपको आम और लीची के पौधे में नवंबर दिसंबर के महीने में पानी ना दें। अगर उस समय आप पोषण और पानी देंगे तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया बंद होकर के और पत्तियां निकलनी आरंभ हो जाएंगी और वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के महीने में आम और लीची के पौधों में सिंचाई ना करें, पोषण ना दें, इसका बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कीट व्याधि भी लगते हैं, तो आप नियमित खेत उस बगीचे की सफाई रखें, टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उसको काटें, बहुत ज़्यादा घने बगीचे ना होने दें, और कीट व्याधि का नियंत्रण सौ समय करें, ताकि आपको ज़्यादा फैलने ना पाए, ज़्यादा आपको नुकसान ना हो।
0: तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप फल के वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में मैम कहा, साथ ही किस्मों के बारे में, किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए पौधों के किस्मों का उनके बारे में मैम ने कहा, नए पौधे लगाने की विधि के बारे में कहा। इसके बाद हमने जाना कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और इसके उपरांत देख रेख कैसी होनी चाहिए। तो मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद आपको भी।
0: और आप सभी को मैं किसान भाइयों आशा करती हूँ आप सभी से कि मैम के दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और अपनी बागवानी को अच्छे तरीके से करेंगे और एक सफल किसान बनेंगे, साथ ही एक अच्छा फल आप बाजार में बिक्री के लिए ले जाएं और हमें भी खिलाएं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों

गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके

अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना, तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना, तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है, यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर, जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना। मुगल कालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा, भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के

0: अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं कोदो मिलेट के बारे में। कोदो मिलेट जो कि काफी फायदेमंद होता है किसान भाई बहनों के लिए भी, और जो उसका उपयोग करते हैं उनके लिए भी। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कोदो मिलेट की खेती की जाती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: सर, सबसे पहला सवाल कि क्या कोदो एक जलवायु अनुकूल फसल है?
8: कोदो बिल्कुल ही जलवायु अनुकूल C4 क्रॉप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्री अन्य फसलों में कोदो मिलेट्स भी एक महत्वपूर्ण श्री अन्य या पोषक अनाज अथवा मोटे अनाज की फसल है। ये सभी मोटे अनाज या कंदन फसलें या पोषक अनाज या फिर हम श्री अन्य की फसलें कहें, ये सभी के सभी जलवायु अनुकूल है, क्योंकि इन सबको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। सुखाड़ की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन दे जाती हैं, और साथ ही साथ कम उर्वर जमीन में भी इनका उत्पादन मिल जाता है। उच्च तापमान पर भी ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक लेवल पर जल की कमी हो रही है, सुखाड़ की स्थिति आ रही है, तापमान का बढ़ना आप लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसे ही समय में श्री अन्य फसलों का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों सिचुएशन साथ साथ रहता है। साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्वानुमान दिया गया है, और हम लोग देख भी रहे हैं कि ई एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात विगत वर्षों की तुलना में कम हो रही है, और अनुमान है कि इस वर्ष 40% तक बरसात में कमी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ये जो श्री अन्य की विभिन्न फसलें हैं, सावा, कोदो, कौनी, चीना, ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और निश्चित तौर पे किसान भाइयों के लिए एक लाभ की लाभकारी फसल हैं।
6: जी सर, अगर हम अब बात करें कि कैसे कोदो मिलेट की खेती करनी चाहिए और कब करनी चाहिए?
8: देखिए, कोदो मिलेट की खेती हमारे किसान भाई लोग बहुत परंपरागत तरीके से बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। हम 1960

0: 1960 के बाद ही गेहूं चावल पर निर्भरता डिपेंड किए हैं। तो ये कोई नई फसल नहीं है, ये प्राचीन फसल है, लेकिन चूंकि गेहूं और चावल की उत्पादकता ज़्यादा मिलने से ये सभी फसलें विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि बरसात में कमी हर जगह होने लगी है, हर रीजन में बरसात कमी होने लगी है, तो वहाँ इन फसलों का महत्व तो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोदो मिलेट को अपने बिहार राज्य की बात करें तो जितने भी किसान भाइयों की ऊपरी ज़मीन है जहाँ जल जमाव नहीं हो पाता है, ऊपरी और मध्य जमीन में, हम कोदो मिलेट को बरसात शुरू होने से या यो कहें कि 15 जून से लेकर के अगर हम 15 जुलाई के बीच में करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद खेती साबित होती है। इसके लिए हमें खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार 2 से 3 बार जुताई किया हुआ खेत ज़्यादा सही रहता है। हालांकि आजकल हम लोग इन सभी मिलेट फसलों को जीरो टिल विधि से भी बुआई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो किसान भाइयों के लिए अपना ऑप्शन है, जीरो टिल मशीन है तो जीरो टिल से भी बुआई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाने के बाद खेत तैयार हो जाता है। उसमें खाद की मात्रा अभी जो हम बताएंगे उसको डाल करके इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी समय मिले कर लेना चाहिए। अब बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि जितने भी हमारी ये मिलेट की फसलें हैं इनको धान की कंपेयर में जस्ट आधी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। कोदो मिलेट को भी कहें तो किसान भाई लोग, आप अपने खेत में जितना धान के खेत में खाद देते हैं उसका जस्ट आधा देना है इसमें, आधे खाद में और बिना सिंचाई के भी ये खरीफ में आराम से फसल आपको प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है कोदो मिलेट। तो अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत पड़ती है। अब जो किसान भाई लोग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एक हम मोटी मोटा बता दें कि आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बोरा यूरिया, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और एक बोरा DAP, आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें, जबकि नाइट्रोजन यानी जिसको हम यूरिया के रूप में दे रहे हैं, हमने बताया एक बोरा यूरिया पर्याप्त होता है जो 45 किलोग्राम की होती है, तो यूरिया की मात्रा 2 बार में देना है। पहला बुआई के 20 से 22 दिन पर जब इसमें कल्ले यानी टिलर निकलना शुरू करते हैं, दूसरा बुआई के करीब 55 से 60 दिन पर जब इसमें बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं। चूँकि कोदो मिलेट जनरली 100 से 105 दिन की फसल है तो नाइट्रोजन को लगभग कम से कम 2 बार में देना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो जितना आप अपने धान में खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसका लगभग आधा मात्रा ही इसमें देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसका बीज दर का, तो प्रति एकड़ की बात करें तो केवल 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है प्रति एकड़ के लिए। बुआई की विधि की बात किया जाए तो इसको कतारों में अगर बुआई किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कतार से कतार की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं, अर्थात 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि बीज की गहराई उथली रहे, जैसे हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो 1 इंच से कम ही गहराई रखते हैं, मतलब गहराई किसी भी कंडीशन में 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा जमाव होता है। तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना होता है जब हम मशीन से बुआई करते हैं, किसी कारणवश हमारा सीड ड्रिल 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बो रहा है तो दिक्कत होता है, उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि जब हम सीड ड्रिल से या जीरो ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हों तो हमारा 10% बीज जमीन पर दिखना चाहिए। अब 10% बीज अगर जमीन पर इक्का दुक्का दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका गहराई सही है। अगर कोई भी बीज जमीन पर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप गहरा बो दिए हैं, फिर आपका जमाव नहीं होगा। तो इसलिए एक विशेष सावधानी देना है कि गहराई 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रखें, किसी भी कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न बोएं। अब बात आती है इसमें
1: उत्तम प्रजातियों की जी सर,
0: क्योंकि हम अगर परंपरागत प्रजातियां लेते हैं तो उसका उत्पादन कम है,

0: कोदो की अभी हमारी यूनिवर्सिटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय अभी हम लोग के पास कोई अपनी प्रजाति नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर की प्रजातियों को पिछले 3 वर्षों में यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें इंदिरा कोदो 1, इंदिरा कोदो 1 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। समझ लीजिए कि इंदिरा कोदो 1 लगभग 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 12 कुंटल दाने आपको प्रति एकड़ मिल जाते हैं मात्र 105 दिनों में। दूसरी प्रजाति है JK 155। JK 155 भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रजाति है और लगभग यह भी 11 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है, करीब 105 से 110 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी प्रजाति है JK 439 और अगला है JK 65। इन सब प्रजातियों का भी उत्पादन करीब 10 कुंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं, इनका ही सिलेक्शन करें। तो इसमें इंदिरा कोदो 1 अथवा JK 155, JK 65, इन प्रजातियों को का चयन कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी इच्छुक हैं, वो अभी हम 20 किसानों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क 2-2 kg बीज डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर इंदिरा कोदो 1 और JK 155 का यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करा देंगे। आप इसको अपने खेतों पे लगाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करें।
1: जी सर, अगर अब हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार से किया जाए?
0: कोदो देखिए एक बहुत ही मतलब खरपतवार के प्रति सेंसिटिव फसल है। अगर हम बुआई के 15 से 35 दिन के बीच तक खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं, उत्पादन में 50-60% तक की गिरावट हो जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडी मिथिलीन का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडी मिथिलीन का प्रति हेक्टेयर 500 से 800 लीटर पानी में आवश्यकतानुसार घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अब सक्रिय तत्व का मतलब है कि 30% का आता है, तो बाजार का प्रोडक्ट जो है 3.3 लीटर हो जाता है। तो आप किसान भाइयों के शब्दों में कहें तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन जो बाजार का प्रोडक्ट है वो पर्याप्त हो जाता है। आवश्यकतानुसार आप 400 लीटर पानी में घोल करके, या आप पानी कम भी कर सकते हैं, 200 लीटर में भी घोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ड्रोन से करेंगे तो मात्र 50 लीटर पानी में ही हो जाएगा, लेकिन आपका दवा जो है प्रति एकड़ 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन पड़ना चाहिए बाजार का प्रोडक्ट। तो इसे बुआई करके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए खेत में, इसे अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बुआई के 20-25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D 58% का रसायन लिया जा सकता है, जिसका लगभग 25 ml दवा प्रति टंकी पानी में ले लिया जाए, या यूं कहे 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप व्यवहार करें तो आ जाता है करीब 24-25 ml प्रति टंकी। टंकी जो 15 लीटर की होती है उसे करिए, प्रति एकड़ लगभग आपको 10 टंकी पानी देना जरूरी हो जाता है। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं, फील्ड में अन्य प्रकार के खरपतवार जो बच जाते हैं उसको हाथों द्वारा निराई करके समाप्त किया जा सकता है।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाई बहनों को 2 किलो बीज मुफ्त में दे रहे हैं,
0: जी
1: हाँ। इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए।
0: इसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। तो इस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के तहत हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें हम जो अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं का बीज किसान भाइयों को देंगे। तो जो JK 155 है उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, इंदिरा कोदो 1 का बीज भी उपलब्ध है। तो लगभग 20-25 किसानों को भी हम फ्री में जो पहले आएंगे पहले ले जाएंगे, 2 किलो बीज हम दे देंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड किसान हैं वो बिहार सरकार के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी बीज प्राप्त कर लेंगे, वहां भी फ्री में बीज मिल जाएगा। और वहां एक सुविधा और है, बिहार सरकार मिलेट उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपया प्रति एकड़ उनके खाते में इनपुट के रूप में पैसा दे रही है और 2,000 रुपये का ऑलरेडी इनपुट दे देती है। तो इस प्रकार देखा जाता है बिहार सरकार

0: प्रति एकड़ आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेट उगाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दे देती है, जिससे आपका इसके प्रति रुझान बढ़े। तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।
1: सर, किसान भाई बहन क्या कैसे मतलब बीज प्राप्त कर सकते हैं वो डायरेक्ट यहाँ विश्वविद्यालय
0: में आकर के, मेरे यहाँ भी आकर के बात कर सकते हैं, या डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म में जाकर के वहाँ से भी बीज ले सकते हैं।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई कोदो मिलेट के बारे में। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।

0: सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
1: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल। और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
0: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
1: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है। लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
0: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के
1: सबसे
0: दौरान?
1: पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहां जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
0: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
1: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपए

0: रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या
0: बुआई
1: अपना?
0: की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिमा, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में वो
0: हाँ,
1: चयन कर
0: देखिए
1: सके।
0: जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, Bio 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, Rajendra Makka 4 है, Rajendra Makka 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप, जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन, उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले

0: जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भूटे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है, तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया, उसको दे दीजिए। और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है।

0: ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है। जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदते हैं, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदे, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदे, खुला हुआ बीज नहीं खरीदे। बीज पैकेट खरीदे, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए। और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी

0: अब मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जोशी यानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक

उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हम बात करने वाले हैं कीट पतंगों के बारे में। तो आप सभी को बता दो किसान भाइयों कि आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं, और ऐसे में चुनौती भरा काम आपके लिए हो जाता है कि आप अपने धान के फसलों को इन कीट पतंगों से कैसे बचा कर रखें। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कीटों का पहचान हो और उनके रोकथाम के लिए पूरी जानकारी हो। तो आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SN राय, मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
3: थैंक यू मैडम।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, और इसके इनसे जो बचाव है उनके क्या क्या तरीके हैं, या फिर किस तरीके से हम इन कीट पतंगों से बच सकें, अपने धान के फसलों को बचा पाएं।
3: धान में लगने वाले प्रमुख कीट में मधुआ कीट, तनाछेदक कीट, गंधी कीट, राई सिस्पा, सैनिक कीट, धान की बभनी, धान का केसवर्म, धान का पत लपेटक, धान का पतंगा आदि।

ये कीट प्रमुख हैं। कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकियां एवं कीटनाशकों के संबंध में जानकारी आवश्यक है। इसे उचित समय पर कीटों को रोकथाम किया जा सकता है। पहला कि धान की तना भेदक कीट मादा पतंग हल्के पीले रंग का उजला कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल को बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों पर गुच्छे में रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शिशु, जिसको शिशु कहते हैं, पत्तियों को पर चलकर पौधों की बढ़ती कोमल को बेधकर तने में घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फल स्वरूप तना सूख जाता है। इसे डेड हार्ट या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती है, तना भेदक कीट का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधन में इस कीट के बचाव हेतु पौधों की रोपाई के समय पौधों के पत्तियों के ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रोपाई करें ताकि इस कीट के अंडे मुख्य खेत में न जा सके। पौधे रोपाई से पहले अंडों को क्लोरोपाइरीफॉस, जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 6 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तनाभेदक से बचाया जा सकता है। तनाभेदक के वयस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।

0: जो फॉस्फोटी इसी दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप नैपसेक या गटोर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। धान का मधुआ कीट, यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के धान के पौधे के तने के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था को हॉपरबर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान के ऊपरी भूमि की अपेक्षा निम्न भूमि धान पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के पौधों को तनों से रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप पौधों में वृद्धि की अवस्था एवं पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है, जो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक की क्षति होती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। इस मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। प्रबंधन: प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपाई करने से इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसकी प्रकोप अधिक हो, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा अनुसार ही करना चाहिए। अधिक नेत्रजन का प्रयोग करने से इस कीट का बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों के प्रति हिल 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। तरल दवा बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 17.8 SL 250 मिलीलीटर, थायोमिथोएक्जेम 25 WG दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: और सर, आपने अभी बताया हमें कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि कीट पतंगों का पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, और आपने बताया तना बेधक के बारे में। तो आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हल्के पीले रंग का कोई अगर कीट दिखता है आपको, तो समझ लें कि वो तना बेधक कीट है। और उसके उपचार के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके अलावे अगर इसके उपचार की बात करें तो पौधा रोपाई से मुझे लगता है कि अच्छा उपचार मिल जाएगा इसका, डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि धान का मधुआ कीट, और इसके पहचान के लिए आप ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं, तो आप समझ लें ये धान का मधुआ कीट है। और इनके प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आगे डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावे भी क्या कोई और कीट हैं जिसे हमारे किसान भाई पहचान सकें और उनके रोकथाम के लिए प्रबंधन कर सकें, तो आगे आप बताना चाहेंगे कुछ और बातें।
0: इस कीट के अलावे गंधी कीट, यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा होता पाया जाता है। इस कीट के एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप पौधों की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। व्यस्क मादा पीले रंग का 25 से 30 अंडे पत्तियों पर एक कतार में देती है। ये अंडे 6-7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं व्यस्क दोनों की अवस्था में फसल को दुधावस्था में दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों में एक भूरे रंग का धब्बा

0: बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण आघात प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट के आक्रमण हो जाता है उस खेत में धान के चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक पाया जाता है। प्रबंधन, खेत के मेड़ों को खरपतवार नौ गुने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। यदि खरपतवार साफ कर लेते हैं तो इसे कीट का प्रकोप कम होगा। खेत में चार प्रकाश प्रपंच, जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत के चारों ओर से घास को साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालॉक्स डस्ट या मलाथियन 5% डस्ट के दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में करें। पत्र लपेटक किस, इस कीट के भारत में कुल चार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षतिकर पाई गई है। इसका प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है। इसके पंखों पर काली धारियां होती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों के सिराओं या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में उसकी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ लेती हैं और अंदर ही अंदर उसके हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां धान की पत्तियों को सफ़ेद, सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु अवलिक लार्वा अवस्था में क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन, खेत के मेड़ पर उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की जनसंख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, इसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। ट्राइकोग्रामा को देने के लिए 6 बार एक सप्ताह के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करें। 10% पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट का कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्लोरोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सैनिक कीट, यह कीट इसके शिशु में हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक कीट गोधूली के बाद रात में पौधों को चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं। यह कीट के द्वारा आक्रमण होने पर या पकने के पूर्व फसल के बालियों को कटी हुई दिखाई देती है। अधिक आक्रमण होने पर पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यह कीट सैनी के समान रात में आक्रमण करते हैं एवं दिन में खरपतवार या पौधों के निचले भाग पर छिप जाते हैं एवं रात में अधिक आक्रमण करते हैं। प्रबंधन, धान की कटाई के बाद पुआल एवं खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। धान को कटते ही हल चलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए जिसे शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो उस खेत में मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आप सभी को बताया।

0: इसके अलावे यानी कि तना बेधक और मधुआ कीट के अलावे गंधी कीट होते हैं जो कि पतला और हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा पाया जाता है और इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसके अलावा इन्होंने पत्र लपेटक कीट के बारे में बताया, तो इस कीट में यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पाई जाती है और इसके अलावा मैं बता दूँ कि इनके पंखों पर भी काली जो धारियाँ हैं वो पाई जाती हैं। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सारे प्रबंधन की बात करें, जितने भी कीट हैं उनके प्रबंधन की बात करें, तो सबसे पहले तो खर पतवार जो मेड़ों पर हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और क्योंकि उससे कीट पतंग जो है उनकी जनसंख्या में कमी आती है। तो आपके मेड़ों पर अगर खरपतवार हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा दें, नष्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी है हमारे किसान भाइयों को, इससे बहुत फ़ायदा और लाभ उठाएंगे हमारे किसान भाई और बहन। और आशा करती हूं मैं कि डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अगर आप अपनाएंगे तो अपने धान की फसल को इन कीट पतंगों से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी कुछ अलग विषय के साथ, कुछ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
5: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी एक बहुत ही पारंपरिक आय का तरीका है, बहुत ही पारंपरिक व्यवसाय है, लेकिन आजकल के बच्चे इस फील्ड में भी अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही है खेती बाड़ी और देश की लगभग 50% आबादी खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। और ऐसे में जब नए लोग खेती बाड़ी से
10: जुड़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ती है, आधुनिक व्यवस्थाएं जुड़ती है, आधुनिक तकनीक जुड़ते हैं और इससे किसान भाई बहनों को बहुत फायदा भी होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे

ये कि खेती बाड़ी क्या है। खेती बाड़ी का मतलब होता है फसल उगाना और पशुपालन करना। इसमें मिट्टी की तैयारी, बीज बोना, सिंचाई, खाद डालना, फसल काटना और पशुओं की देखभाल करना शामिल है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें तकनीक, नई तकनीकों का उपयोग बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि खेती के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि खेती के कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य है। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि सामान्य खेती। इस प्रकार की खेती में किसान अपने परिवार के लिए ही फसल उगाते हैं और जाहिर सी बात है इसमें अधिक मुनाफे की अपेक्षा नहीं की जाती है। वहीं कमर्शियल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक खेती में बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती है और बाजार में बेची जाती है। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें शामिल है। वहीं खेती के अगले प्रकार की बात करें तो आजकल इस प्रकार की खेती की बहुत डिमांड है और नए लोग जो खेती बाड़ी से जुड़ना चाहते हैं वो भी खास तौर से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना चाहते हैं, यानी कि जैविक खेती करना चाहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती से पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और साथ ही हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड हस्बेंड्री। इसमें फसल उगाने के साथ साथ किसान भाई बहन पशुपालन का भी काम करते हैं। ये उनके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाता है। वहीं अब हम आगे जानते हैं कि आधुनिक खेती कैसे किया जा सकता है। पुराने समय में पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब नई तकनीकें हमारी खेती बाड़ी को आसान बनाती है तो क्यों ना आधुनिक खेती अपनाया जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। पुराने तरीके में सिंचाई के दौरान पानी की काफी बर्बादी हो जाती थी, लेकिन ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन के दौरान पानी की बूंदें पौधों की जड़ तक पहुंचाई जाती है और जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल कम होती है। वहीं अगले तरीके की हम बात करें तो अगला तरीका है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि इस तकनीक में मिट्टी के बिना पानी में पोषक तत्व मिलाकर पौधे उगाए जाते हैं और ये शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर जगह घर बन रहे हैं और ऐसे में मिट्टी बहुत कम देखने को मिलती है, तो मिट्टी के बिना ही पानी में भी बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं और ये भी युवाओं के द्वारा अपनाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगले तरीके की हम बात करते हैं यानी कि कीट प्रबंधन यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट। कीटनाशकों का जो अधिक उपयोग है वो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जब जैविक कीटनाशकों और प्राकृतिक तरीकों से तैयार किए गए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है तो इससे कीटों को नियंत्रित बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया जाता है और साथ ही कोई भी नुकसान नहीं होता ना फसल को ना हमारे शरीर को। अब हम जानते हैं कि फसल चक्र क्या है यानी कि क्रॉप जायरेशन क्या है। कई बार जानकारी के अभाव में किसान भाई बहन क्या करते हैं कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं और इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे में फसल चक्र अपनाकर किसान भाई बहन मिट्टी को पोषण दे सकते हैं। जैसे कि धान के बाद आपने गेहूं उगा लिया, फिर दलहन उगा लिया, या तो फिर मक्का के बाद सोयाबीन बो दिया आपने, उसके बाद गन्ना बो दिया, तो अलग अलग तरह के फसल आप जब अपने खेत में उगाते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रहती है और फसल चक्र अपनाने से कीटों का प्रकोप भी कम होता है, यानी कि फसलों को बहुत फायदा होता है इससे। अब तक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन खेती बाड़ी में आने वाली चुनौतियों के बारे में बातें नहीं की है। कई सारी चुनौतियों का भी सामना किसान भाई बहनों को करना पड़ता है, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या होती है मौसम की अनिश्चितता। या तो बारिश का ना होना या फिर बहुत ज्यादा बारिश का होना फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बाजार तक पहुंच की कमी भी किसान भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। वहीं हम बात करें तो पानी की कमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से सिंचाई में भी दिक्कत होती है। अब इसके लिए सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी है और इसके समाधान भी हैं। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए खेती बाड़ी बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो भारत सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हुई है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान। इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगली योजना की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC, इसमें कम ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मिल जाता है। अगली योजना की बात करें तो ये है ई नाम। ई नाम एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंडी है जहां किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। बाजार तक पहुंच की कमी जैसी चुनौती को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को जैविक खेती, जल संरक्षण और सहकारी समितियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए और इसके लिए आप हमारे लगातार कार्यक्रम को भी
भी सुन सकते हैं, जिसके जरिए आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के।
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर,
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: मतलब धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखार पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली।

0: 的。उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और साथ ही हम आपको बता दें कि उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज एक विषय लेकर फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ, और विषय है गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओं, आज गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हम जानेंगे और इसमें कीट प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रंजीत कुमार। मैं आपको बता दूं, ये सहायक प्राध्यापक हैं सहकनीय वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों के मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
1: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं इस समय, उसमें से सबसे प्रमुख कीट है हीरक पृष्ठ पतंगा, दूसरी कीट है माहू, तीसरा कीट तंबाकू की सूढ़ी जिसको टोबैको कैटरपिलर कहते हैं, और चौथे कीट है जिसे हम चना के फली छेदक कीट कहते हैं। इन चारों कीटों का मुख्य रूप से गोभी वर्गीय फसल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, उसके बाद जो सलजम होती है, इन सारी फसलों पर इन कीटों का प्रकोप बहुतायत हमारे प्रदेश में देखने को मिलता है।
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों की हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किन किन कीटों से होता है इसे?
1: जी किसान भाई, आप सभी गोभी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और हमारे प्रदेश में बहुतायत तौर पर गोभी वर्गीय फसल उपजाई जाती है, और इसमें जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें तंबाकू की सूढ़ी, हीरक पृष्ठ पतंगा और चने का फली छेदक कीट। सामान्य तौर पर आप सभी किसान भाई देखे होंगे कि कभी कभी पूरी पत्तियां काट करके कीट पूरा उसको पेपर जैसा बना देता है, पूरा छलनी जैसे जाली नुमा संरचना बन जाती है। ये शुरुआत की अवस्था होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है, पत्ता गोभी की अगर बात करें तो पत्ता गोभी में पूरे छेद छेद से बन जाते हैं और वो मानवीय उपयोग के लायक नहीं बच पाता है। फूल गोभी की अगर बात करें तो फूल गोभी के ऊपर इन्हीं सारे पिल्लू के द्वारा इस तरह से खान लिए जाते हैं कि वो खाने के अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसकी जो मादा होती है पत्तियों के ऊपर, और गोभी की जो निचली भाग होती है, जो जमीन से थोड़ा जड़ से ऊपर की भाग होती है, उन पर ये मादा अंडा देती है। अंडा देने के 4 से 5 दिन के बाद ये पिल्लू बन जाते हैं, और पिल्लू की जो अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा क्षतिकारक होती है और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है और उनको मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और इनकी पिल्लू उस इस तरह से नुकसान करने लगती है, और साथ ही साथ उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो मल मूत्र वो पिल्लू त्यागते हैं, उस गोभी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे देखने में भी खराब दिखने लगता है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये पिल्लू कोसा के अवस्था में आते हैं तो मिट्टी के अंदर कोसा के अवस्था में या सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं, और बाद में फिर तितली बन करके निकलती है। इस तरह से उनके जीवन चक्र चलते रहते हैं। अगर हम बात कर लें कि हीरक पृष्ठ पतंगा का, तो किसान भाई सबसे बढ़िया पहचान इसकी ये है कि हीरक पृष्ठ पतंगा के जो व्यस्क कीट होता है नर और मादा, इसके पीठ पर चमकती हुई धारी बनी रहती है। आप उसे गौर से अपने खेतों में देखेंगे तो ये लंबी लंबी सी जो व्यस्क है इसके पीठ के ऊपर चमकता हुआ पीले रंग का धारी बनी रहती है। भूरे रंग के कीट के ऊपर पीले रंग की धारी बनी रहती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। और तंबाकू की सूढ़ी की बात करें तो इसके जो व्यस्क कीट होते हैं, इसके पंखों के ऊपर गोल गोल संरचना बनी रहती है, जो धूसर काले रंग के होते हैं और उस पर पीले चमकीले रंग की गोल संरचना बनी रहती है, तो इससे इन कीट की पहचान कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि कौन कौन से कीट जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की, तो गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें हम?
1: गोभी वर्गीय

0: फसलों में समेकित कीट प्रबंधन करने से हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो बिचड़ा गोभी के गिराएं, उसी समय सर्वप्रथम बीज का शोधन करें। बीज का सामान्य तौर पर हमारे किसान कवकनाशी फफूंदनाशी दवाइयों के द्वारा बीज का उपचार कर लेते हैं, बीज का शोधन कर लेते हैं। हम किसानों को आज इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि गोभी के बीज को कीटनाशी रसायन के द्वारा भी शोधित किया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया जो प्रयोग करने के लिए आता है, गाउचो नाम की एक दवाई होती है, 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से मिला करके उससे हम बीज का उपचार करके अगर लगाएं तो स्वस्थ हमें पौधा तैयार मिलेगा और फिर उसे हम खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई इन बात का ध्यान रखें, और उसके बाद जब पौधे को खेतों में लगा देते हैं तो लगाने के बाद आप एक फेरोमोन ट्रैप होती है जिसको गंध प्रफास कहते हैं, इन कीटों को जो मैंने नाम आपके समक्ष बताया, इन कीटों के गंध प्रफास बाजार में उपलब्ध है, इसको आप खेतों में प्रयोग करेंगे तो इससे आपको पता चलेगी कि किस समय में कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है और उसके हिसाब से आप कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो ये कुछ बातें हैं इनके समेकित कीट प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, अगर मैं इनमें प्रयुक्त होने वाली कीटनाशी रसायन और पेस्टिसाइड के बारे में पूछूं तो कौन कौन से हैं वो भी बता दें।
0: जी, सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि किसान कोई भी कीटनाशी रसायन ले आकर के छिड़काव कर देते हैं। हम किसान भाई आप सबको ये सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हीं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें जिसको वैज्ञानिक के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, और जितनी मात्रा में अनुमोदन की जाती है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि कीटनाशी रसायन की कम मात्रा और ज्यादा मात्रा दोनों ही घातक होती है। अगर कुछ आपके समक्ष हम बात करें कि कौन कौन से कीटनाशी रसायन है जिसका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है, जो हमारे वातावरण के लिए सुरक्षित हो, हमारी फसल के लिए सुरक्षित हो, हमारी मृदा के लिए, हमारी वायु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, तो इनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे फ्लूबेंडिया माइट 39.5 SC के नाम से एक कीटनाशक रसायन आती है जो बाजार में फेम के नाम से मिलेगी। 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई नोवा ल्यूरान के नाम से बाजार में मिलती है, इसको आप 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी दवाई क्लोरांट्रा नीली प्रोले जो कोरोजन के नाम से बाजार में मिल जाएगी, इसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। उपर्युक्त कीटनाशक रसायनों के जो बाजारू नाम हम आपके समक्ष बताए हैं आपके उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको खोजने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर बायो पेस्टिसाइड का निर्माण करके उसको आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नीम की पत्ती है, नीम का तेल है, जिसको आप पीस करके, नीम के पत्ती को पीस करके उसको पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो जो भी कीट है उन कीट का प्रकोप आपकी फसल में नहीं आएगा। दूसरा है नीम का तेल, नीम का तेल 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करने से ऐसा देखा गया है कि कीटों का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है, और ये आप अपने खेतों में घरों में तैयार कर सकते हैं।
1: तो ये कुछ बातें हैं गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन को लेकर, जो कि आपको ध्यान रखना है इन बातों पर किसान भाइयों। तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा आज के इस वार्ता से, और इसके साथ ही अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे

0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन

धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दे मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं।

0: कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थे या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो

चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी। और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे के मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं। ये गलत है, आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं

0: ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए। और ख़ुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और ख़ुद की तारीफ़ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और ख़ुद से प्यार कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेज ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहें हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में. और बहुत ही खास विषय है, सोयाबीन की हम बात करें. सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं. अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की. जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है. लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं. तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर. और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी. मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं. तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: सर. जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र. तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं. तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है. सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है. जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है. इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं. खगड़िया में मक्के गेहूं की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं. हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं. कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं. कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है. इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं.
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की. कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में. अगर सोयाबीन की हम बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
1: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीच प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए, तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है. वही पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है. आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है. इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है. पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकोनी की आवश्यकता होती है. इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है. कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है. पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है. इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं.
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं. और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे. उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी. इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी. बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई. बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ. एक पहली किस्म है PK 472. ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है. इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है, और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है. यह किस्म पीला मोजाइक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से

0: प्रतिरोधी होता है। दूसरी वेराइटी है JS-335, यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली, 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोज़ेक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC-12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोज़ेक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS-5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH-93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम, दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH-97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH-95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरन एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोग तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्य क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये सस्य क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी, भारी, उपजाऊ, अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े, रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने के अगर बीज हो तो

0: 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बन रेजिम या थीरम के 2 ग्राम किलोग्राम बीज का 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बखरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उथली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्यूलोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रभावित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।

0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोब्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या एसपी 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्विनोलोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजिम 50 WP या थाईफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थाइमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर थाइमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी। फिलहाल नमस्कार। कृषि

0: सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ,
2: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
12: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज हम विषय लेकर आए हैं हरी खाद से मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। तो इसके बारे में आज विस्तार तौर से आप सभी को जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद। मैं आप सभी को बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
12: सर, सबसे पहले तो ये हरी खाद किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए।
13: मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों की खेती चल रही है उसमें काफ़ी सघन खेती हो रही है और उसके वजह से खेत को रेस्ट नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है कि खेत को कुछ दिनों के लिए आराम दें ताकि खेत की जो उपजाऊ क्षमता है उसका जो दोहन हुआ है उसकी भरपाई कर सकें। तो सघन खेती और इंटेंसिव क्रॉपिंग के वजह से ये आवश्यक हो जाता है कि जो जिन चीज़ों का क्षरण खेत के द्वारा खेत के से हुआ है, जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया है, अवशोषित किया है, उसकी कुछ हद तक भरपाई कर सकें। तो भरपाई करने का एकमात्र उपाय है कि अलग से हम खेत में वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो खेत की उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखे, उसमें जो पोषक तत्वों का लॉस हुआ है, क्षरण हुआ है, कमी हुई है, उसको मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए खास करके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर का जो मुख्य स्रोत है वो है हरी खाद।

0: हरी खाद का मतलब है कि जो मैक्सिमम फोलिएज वाले, जिनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, शाखाएं ज़्यादा होती हैं, और उसके माध्यम से हम खेत में या तो उसको बाहर से ला करके या खेत के अंदर ही उसको पैदा करके उस खेत में उसको समावेशित कर देते हैं, और जिसके वजह से जो ग्रीन बायोमास है वो खेत को प्राप्त होता है और बाद में सर करके ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ बहुत सारी जो पोषक तत्व हैं उसको मुहैया कराता है। तो हरी खाद मुख्य रूप से दलहनी फसल के रूप में जो फोलिएज वाले पौधे हैं, जैसे सनई है, ढैंचा है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मूंग है उसका इस्तेमाल करते हैं, उड़द का इस्तेमाल करते हैं, और जो दलहनी फसल नहीं है उसका भी विशेष तौर पर जब ऐसी कमी हम महसूस होती है तो उसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे सरसों का पौधा है तो इसका भी हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं।
1: इसके फायदों के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ फायदे हैं हरी खाद के?
0: देखिए मैडम, इसके तो बहुत फायदे हैं, और किसान भाइयों को मैं ये बताना भी चाहूँगा कि एकमात्र ये साधन है, संसाधन है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखने का, और कम से कम लागत में अगर मिट्टी की उर्वर क्षमता को आप बनाए रखना चाहते हैं, टिकाऊ बनाए रखना चाहते हैं, तो हरी खाद का आप प्रयोग करेंगे। और हरी खाद के लिए खास करके दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है, उसमें हमने पहले भी बताया कि जैसे सनई है, ढैंचा है, मूँग है, उड़द है, तो ये सारे जो दलहनी फसलें हैं, और इसमें खासियत होती है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित भी करते हैं और जड़ों में ही नाइट्रोजन को अवशोषित करके रखते हैं। तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि लगभग 78% नाइट्रोजन है जो मुफ्त में हमें उपलब्ध रहता है, और पौधा इन नाइट्रोजन को अवशोषित करके जड़ों में फिक्स कर देता है, तो हमारी नाइट्रोजन की मांग, जो फसल की नाइट्रोजन की मांग है, वो कम हो जाती है। दूसरा, अगर हरी खाद का हम प्रयोग करते हैं तो खेत में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ है खेतों में, उसकी जो कमी हो रही है उसकी मात्रा बढ़ती है, उसके वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जो सॉइल का इरोजन है, क्षरण है, उसको भी ये हरी जो हरी खाद जब हम लगाते हैं खेतों में तो उसको भी रोकता है, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं बनी हुई रहती हैं, बरकरार रहती हैं, और साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण को अगर हम कहें कि जैविक विधि से एक अगर करना है तो हरी खाद एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है, उपाय है खरपतवार नियंत्रण करने का। तो इस तरह से हरी खाद के प्रयोग से कई एक प्रकार के फायदे हमारी मिट्टी को मिलते हैं, हमारे फसल को भी मिलते हैं।
1: अब बात करते हैं कि इसे किस रूप में कब उपयोग करना चाहिए।
0: मैडम, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हरी खाद को कब और किस रूप में प्रयोग किया जाए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हरी खाद को दो तरह से प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो जिस खेत में हमको हरी खाद का प्रयोग करना है उसी खेत में उस हरी खाद के रूप में जिस फसल को हम लगाने जा रहे हैं उसका हम बुआई उसी खेत में करेंगे, इसको बोलते हैं इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जब उस हरी वो जो हमारा हरी खाद वाला फसल है, जैसे ढैंचा को उसी खेत में हम बुआई करेंगे और उसी खेत में फिर पलट देंगे, तो ये कहलाएगा इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जब ढैंचा को या सनई को या दूसरे हरी खाद को हम दूसरे खेत में लगाएंगे और फिर वहाँ से काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके दूसरे खेत में हम प्रयोग करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तब वो एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग कहलाएगा। तो इस तरह से दो तरह से हरी खाद का प्रयोग करते हैं, और सबसे जो इसका सुगम और आसान तरीका है हरी खाद के इस्तेमाल का, इसके लिए हम दो फसलों के बीच का जो गैप होता है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस पीरियड में खेत खाली भी रहता है। जैसे गेहूं, अगर हमारे यहाँ तो धान और गेहूं का फसल चक्र काफ़ी प्रचलित है, तो धान के बाद गेहूं लगाते हैं और गेहूं के बाद खेत या तो खाली रहता है या मूंग लगाता है।

0: करते हैं। तो गेहूं कटने के बाद और पुनः धान लगाने के बीच का जो समय है, 2 से 2.5 या 3 महीने का समय, उसका प्रयोग करके हम हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हरी खाद को लगा सकते हैं। अगर हम मूंग लगा रहे हैं तो मूंग की फलियों को तोड़ने के उपरांत, जब एक दो बार हम फली को तोड़ लेते हैं और जब लगभग फली ना के बराबर रहता है, तब उस मूंग के पौधे को उसी खेत में हम समावेशित करते हैं, डाल देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वो भी एक ग्रीन मैन्योरिंग है। और अगर हम चाहें कि ढैंचा लगा के अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, तो गेहूं की कटाई के उपरांत जब प्री मानसून रेन होता है, तो उस प्री मानसून के द्वारा जो नमी प्राप्त होती है, उस नमी का प्रयोग करके हम ढैंचा की बुआई कर सकते हैं खेतों में। और फिर 55 से 60 दिनों का जब वो पौधा हो जाता है, तब उसको फिर हम उसी खेत में कैजुअल के माध्यम से हम दबा सकते हैं या एमबी प्लाव के द्वारा उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 तरीके से हरी खाद का प्रयोग खेतों में करते हैं और ऐसा करने से हमारी मिट्टी की उर्वर क्षमता, उपजाऊ क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है।
1: जी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के बारे में अभी बता रहे थे कि ये बढ़ जाती है और पैदावार को हरी खाद भी प्रभावित करती है, तो कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
0: जी, हमने पहले आपको बताया है कि चूंकि हरी खाद में खास करके हम उन फसलों का प्रयोग करते हैं, हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि दलहनी फसल हो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता दलहनी हरी खाद जो है उसमें होती है, तो नाइट्रोजन हमको मुफ्त में मिलता है, जिसके वजह से नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। दूसरा, जब हरी खाद को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को उपलब्ध होता है, जिसके वजह से खेत के अंदर जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, उसके वजह से बहुत सारी क्रियाएं जो एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके वजह से मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं जो अनुपलब्ध फॉर्म में हैं, पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात कि जब ये ग्रीन मैन्योर हरी खाद जब सड़ता है, तो इसके सड़ने से 2 तरह के एसिड निकलते हैं, और ह्यूमिक एसिड और फल्बिक एसिड। तो ये जो एसिड हैं, ऑर्गेनिक अम्ल हैं, जब इसके द्वारा क्या होता है कि जो फिक्स फॉर्म में पोषक तत्व हैं मिट्टी में, उसको घुला करके भी पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उस पोषक तत्व जो अनुपलब्ध रूप में है, उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है और पौधे उसको आसानी से ग्रहण करने लगते हैं, जिससे फसल जो हम फसल ले रहे हैं हरी खाद के बाद, उस फसल की उत्पादकता भी बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और हमारी मिट्टी की जो भौतिक गुण हैं वो भी सुधर जाते हैं। और साथ ही साथ चूंकि इसके व्यवहार से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है, तो जल धारण की क्षमता बढ़ने से मिट्टी में जो भी फसल हम लगाते हैं उसको नमी की कमी नहीं होती है और उसको सुचारू रूप से नमी उपलब्ध होता रहता है, तो हमें पानी की भी बचत होती है। तो इस तरह से कई एक प्रकार से ये हरी खाद हमारे मिट्टी को भी मजबूत बनाते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और फसल को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है।
1: जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाई, आप हरी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बिना किसी हानिकारक तत्वों के। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, फ्रिक्वेंसी यही याद रखें, 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी

गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूर मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छतरी छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों

के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है। बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है, जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें। रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में अमेज़न फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है पर उनके आसपास कोई नहीं होता। तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नाइन्टी पॉइंट एट एफ एम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7/7/2026 से 10/7/2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहेब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
2: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
3: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
2: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से

0: विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ,
3: देखिए, रखो, देखिए।
2: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
7: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
6: वहाँ अंगुलीमाल है।
7: हाँ प्रभु,
6: वो बहुत बड़ा डाकू है।
8: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
6: जाए।
8: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
9: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्य पूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: ठीक है।

0: फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं

0: आत्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है।
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
0: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
3: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्म स्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
3: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
3: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
2: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
3: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे।

0: और वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से मिले।
1: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
1: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
1: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
3: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
3: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
0: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
3: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी
0: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
0: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती,

0: फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डीफिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनके मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का

0: से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना,
3: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा, थैंक यू। नमस्कार सभी को।
7: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है, वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
8: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
7: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
8: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते। हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली। एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के

ये अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चीज़, DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजली हम मीडियम ड्यूरेशन, मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं, वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज़ होते हैं ना दाने के, उसी साइज़ से कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होते हैं हैंड से, हैंड हैरो, यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी, आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया, बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में
सीधे, मतलब जैसे आप एक बन लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो

उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें डीएसआर में। तो डीएसआर मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब दो लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि डीएसआर का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन एक हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस दो स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 kg प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 kg फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 kg प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 kg प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, तो उस 220 kg प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने, मैंने बताया, जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा।

0: अच्छा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से, लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में, वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए जैसे ब्यूटाक्लोर है या बैक सोडियम है, आपको डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे, आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या 2 बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम डीएसआर पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुवाई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका पीएचबी 71 हो गया, पूसा आरएच 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
12: यानी

0: किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जोशी यानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
2: कृषि विभाग द्वारा जारी
1: पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है।

ग्रासहॉपर को किसान फुदका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 एफएम ग्रीन पर और मैं हूं ईश्वर चंद्रा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान पीएमजेएवाई के नाम से भी जानते हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान पीएमजेएवाई योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं। साथ ही बात करेंगे कि आशा और एएनएम जैसी स्वास्थ्य कर्मी इसमें क्या भूमिका निभा सकती हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस किस तरह की फॉलोअप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं

0: टीकन भाभी।
1: आरजे ईश्वर धन्यवाद। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता था। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी। पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराए, पैसा कहाँ से आएगा। एक दिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही है। समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और एक रुपया भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: अरे टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए कि आयुष्मान पीएमजे में 70 वर्ष से उम्र के ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखकर शामिल किया जाता है और बगैर शर्त इसका इलाज होता है।
1: देखिए, आयुष्मान पीएमजेवाई में 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: टीकन भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताएं कि क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है?
1: आरजे ईश्वर, आयुष्मान पीएमजेवाई में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर, घुटना बदलवाना हो, कुल्हा रिप्लेस करना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब भी इस योजना में शामिल है। और जहां तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना होता है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: टीकन भाभी, एक खास बात तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान पीएमजेएवाई में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए भी अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं आरजे ईश्वर, छोटे बच्चों का अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं। यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती है। बस माता या पिता अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो जाता है।
0: तो टीकन भाभी, अब अगला सवाल ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल है? क्या सिर्फ दवाइयां मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है?
1: असल में इस योजना की खासियत यही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई, अब भर्ती होने से 3 दिन पहले डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाई, ये सभी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जाँच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो उसका पूरा इलाज योजना के तहत ही चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान पीएमजेवाई में शामिल है। अस्पताल का बेड, आईसीयू या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खान पान सब फ्री है। तो सीधी बात ये है कि पीएमजेवाई योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
0: वाह, बहुत बढ़िया टीकन भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक बात और कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान पीएमजेवाई में ही मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या कोई छोटी मोटी जाँच। यानी इलाज के बाद भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
0: तो भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है? मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तब भी इलाज संभव हो सकता है क्या?
1: अरे हाँ आरजे ईश्वर, बिल्कुल, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से

0: बाहर जाते हैं और वहाँ बीमार पड़ गए। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वहाँ भी इलाज फ्री में करवा सकता है।
1: बिल्कुल। तो टिकन भाभी, एक और बात मेरे भेजे में आ रही है कि सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो क्या आयुष्मान PMJAY में भी उनकी कोई भूमिका होती है?
0: देखिए,

0: फिर ANM और आशा दीदी घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान PMJY योजना के बारे में समझाती है, कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इसे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में यही लोग समझाती हैं और लोगों को बताती हैं इनके महत्व के बारे में। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियां एक हफ्ते के अंदर किसी भी मरीज से मिलने जरूर पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी है, विजिट की जो तारीख बताई गई है, सब चेक करती है और मरीज को ठीक से समझाती है सब कुछ। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी तो और भी ज्यादा सतर्क रहती है। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी आशा दीदी ही करती है। इनका काम यहीं खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब करना है, सब लिखकर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
0: हाँ RJ ईश्वर, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी बहुत आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बना दिया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 14555 यानी कि 14555 किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी एक वेबसाइट भी तो है, www.pmjy.gov.in। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उसका नाम इस सूची में है या नहीं है और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैट बॉट भी है जिसमें बस आप अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर की जाती है, आपके कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए और जरूरी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
1: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात। तो टिकन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान PMJAY का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
0: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप है ना, ये सबसे बढ़िया ऐप है इसके लिए। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुन लें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुन लें। अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुन लें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन कैसे करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये मैप आपको बता देता है। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
1: हाँ, तो भागलपुर से जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है। वो भी अपने आसपास के कौन से अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड हैं, कौन से अस्पताल तक उनको सुविधा मिल सकती है, किस इलाज का कहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत आपको इलाज संभव है, ये सब कुछ इन्हीं विधि द्वारा आप देख सकते हैं। तो टिकन भाभी, एक और बात कि आयुष्मान PMJAY तो बड़ी अच्छी योजना है, जैसा कि आपने इसके पूरी व्याख्यान की। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव आया, कुछ इसके बारे में बताएंगे क्या?
0: हाँ, इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर दी। सबसे पहले तो जो परिवार महंगे इलाज के डर से अस्पताल जाने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक बड़े अस्पताल में जाकर आराम से इलाज करवा रहे हैं।
1: सही बात भाभी, गांव में तो लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे और आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल, चाहे मेदांता हो, पारस हो, पटना तक जाकर के इलाज करवा रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने RJ ईश्वर, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर का हो या हड्डी का हो। बहुत से बुजुर्ग जिनका सालों से इलाज अटका था अब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आराम से इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान PMJY ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करवा सकता है।
1: तो दोस्तों, आयुष्मान PMJAY योजना ने वाकई लाखों परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज के नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर शान से सर्जरी करवा रहे हैं।

और तो और, जिन अस्पतालों को देखकर जी घबराता था कि ये होटल है या हॉस्पिटल, आज उन्हीं बड़े अस्पताल में आप वहां पर सीना तान कर जाते हैं और अपना PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड निकालकर इलाज कराते हैं। तो श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचे जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रखे और वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: FM Green हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
4: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
5: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है। बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं, और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है, और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
4: मैम, अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
5: बैंगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है, और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और 2 जो जैसे क्यारी बनती है तो 2 लाइन के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है, और बीज क्योंकि बैंगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है, और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं, और ये जो पौधा है

0: उसका रुपाई का समय होता है एक महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में, या और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में, तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रुपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में इसकी बुआई करते हैं, और एक महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रुपाई करते हैं।
1: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
0: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रुपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में।
1: जी, और रुपाई की विधि क्या होती है?
0: बैगन की बिजड़ा जब एक महीने के लगभग हो जाते हैं उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रुपाई करते हैं। तो रुपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रुपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है, तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं। और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे, और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए, जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
1: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
0: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रुपाई के 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
0: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5

0: प्रतिशत जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
0: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं। और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे। और जब शरतकालीन जो फसल होता है, जब हार्वेस्ट होने लगते हैं, फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है, उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को 1-1 सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पे जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर 1-1 सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद 1 सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
1: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं, तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए, हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको, तना को छांट देते हैं, तो उस पर देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो

0: जो है तनाव एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है, उसके आधा मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसकी छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
1: और मैम, रोग भी काफ़ी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: बैंगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का, वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है। तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा। बीज को हम लोग थायरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बेंडाजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं, इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली, तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था, वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं, तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
1: मैम, अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए, और उपज कितना होता है बैंगन का?
0: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है, और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए, तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पर करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से

0: हम लोग खेती करते हैं बैगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है, मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं, और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से, मैम है BSc सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद।
1: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
11: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को

0: पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुंचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का। इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बड़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है। तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं, जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए इस पर बैन लगाया गया है, कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम, अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन चैम्बर, इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है। वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90 से 95% रखी जाती है, जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है। नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहिए।

0: आते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से, कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारी किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। तो

0: कोई हारेगा, देश जीतेगा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री यानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से

पेशाब के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents audio book Our Wondrous World, textbook of environmental studies for grade 5.
3: Page number 38, unit 2, health and well-being. About the unit. This unit at the preparatory stage familiarizes students with different types of food, importance of balanced food, health care and maintaining good health with regular exercise and rest. Students also learn how traditional agricultural and cultural practices support health and well-being in sync with changes in seasons. This unit in grade 5 helps students explore how everyday choices support personal and collective well-being. Students learn how to take care of food and explore various traditional Indian methods of food preservation. They learn about the role of good microbes and cultural practices that help keep the food safe. This unit also encourages students to take care of their home and surroundings for better health. They learn how to make their school a greener, cleaner and more caring place through actions like waste management, water conservation and practicing kindness. At the bottom of the page, there is a picture depicting an elderly woman in a sari sitting on a mat with two children, a boy and a girl, outdoors. They are sorting and examining seeds and beans laid out on the sheet of paper. Page number 39. Note to the teacher. This unit consists of two chapters, Chapter 3, The Mystery of Food, and Chapter 4, Our School, A Happy Place.

0: नरेशन चिंकी गोस्वामी, साउंड रिकॉर्डिस्ट मोहम्मद फैजान खान, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन सुरेंद्र कुमार, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विमलेश चौधरी. दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT न्यू दिल्ली इंडिया.
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है. और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है. टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता. टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव.
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है. तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं. देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार.
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ.
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ.
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ.
5: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है.
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर.
9: हर घर सूर्य घर.
10: हरियाली से खुशहाली तक.
11: उन्नत कृषि. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन. और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हां, किसान भाइयों, जिसका इंतज़ार आपको रहता है और वो कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन रहे हैं. और इसमें आज हम दालों के बारे में जान रहे हैं, यानी दाल. आज अरहर दाल के बारे में हम जानेंगे, आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और साथ ही अरहर की खेती के लिए आपको कौन सी भूमि चयन करनी चाहिए, कौन से प्रभेदों को आपको लेना चाहिए. इसके साथ ही अगर कुछ रोग व्याधि लगते हैं तो आप उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीट कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आज आपको, अगर आप हमारा यह कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएंगी. तो इस खास विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर आनंद कुमार. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज पूरी की पूरी जानकारी आप इनसे सुन सकते हैं. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
12: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौसम अनुकूल अरहर की उन्नत खेती कैसे करके ज़्यादा हम लोग फायदा कर सकते हैं. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है तथा यह भोजन का अभिन्न अंग है. दलहनी फसलों में अरहर एक प्राचीनतम एवं लोकप्रिय फसल है. भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना के बाद दूसरा स्थान रखता है. जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती, मृदा की उर्वर शक्ति को कायम रखने में या और पोषण सुरक्षा में अरहर जैसी दलहनी फसलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वह शाकाहारी है, उसे प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन की प्रतिपूर्ति हेतु दैनिक भोजन में दालों का समावेश अति आवश्यक है. अरहर एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग उसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं. अरहर

0: प्राय असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। अरहर सूखा प्रतिरोधी जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त 20-22% प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति के वृद्धि गुणों के कारण यह फसल अब हमारे सीमांत किसानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या क्या ये इनकी विशेषताएं हैं, और अब खेती की बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भूमि का चयन, तो कैसी भूमि में की जाए जो किसान भाइयों को इससे उपज अधिक हो।
0: किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरहर की खेती में भूमि का चुनाव एक अत्यंत जो हम लोग ध्यान रखने की बात है, और भूमि का चुनाव करते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा और समतल हो जिससे जल निकास अच्छी हो। बिहार में अरहर प्राय मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट या अथवा दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच सर्वोत्तम मानी जाती है। और खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अरहर की फसल उगाने के लिए खेत को की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं। 2-3 बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। जुताई के समय गोबर की सरी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। अरहर के खेत में पानी का जमाव कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ अधिक वर्षा होती हो वहाँ रेस्ट बेड जैसे हम लोग कहते हैं उठी सैया बनाकर या मेर या नाली बनाकर बोना एक आदर्श बुआई विधि है। अतः अधिक उपज लेने के लिए फसल को इस विधि से लगाना अधिक उपयोग होगा। आजकल हमारे बिहार में जितने भी हमारे किसान भाई जो मेर पर है वो अपना मेर के जमीन का ज़्यादा उपयोग अरहर की खेती के लिए कर रहे हैं।
1: तो ये थी कुछ बातें जैसे कि आप जिसे आप करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं जमा रहने दीजिए और पानी खेतों से बिल्कुल निकाल लीजिए अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ उन्नतशील प्रभेदों की, तो उन्नतशील प्रभेद कौन कौन से हैं अरहर के जिसकी बुआई करके हमारे किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: किसान भाई, हम लोग को प्रभेद का चयन के समय एक सावधानी बरतनी यही है कि हम लोग जो भी प्रभेद का चयन करें वो ऐसे प्रभेद लें जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां का इस्तेमाल से अरहर की उत्पादकता को हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिहार में अभी भी कि मात्र 20-30% किसान ही अरहर की उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः अरहर की उन्नत कीट रोगी प्रतिरोधी किस्मों के बीज को समय पर उपलब्धता एवं किसानों द्वारा उपयोग किया जाना बेहतर उपज के लिए निहायत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अरहर की खेती 2 समय में करते हैं, एक है खरीफ मौसम में और दूसरा सितम्बर के समय में। तो जो खरीफ मौसम में करते हैं उसको लगाने का समय है 1 से 31 जुलाई। उसमें हमारे बीच बहुत से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय चाहे दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है उससे आप लोग जो उन्नतशील प्रभेद जैसे IPA 203 यह प्रभेद अभी नवीनतम प्रभेद है और 2017 में इसको अनुशंसित किया गया है। यह प्रभेद 240 से 250 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज औसत उपज 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अरहर में 2 रोग बहुत महत्वपूर्ण होती है जैसे उकठा एवं बंधता मोज़ेक रोग, ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसी तरह एक और नई किस्म आई है जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से विकसित की गई है, यह IPA 206 260 से 270 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसका औसत उपज बहुत अच्छा है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है तथा इसका दाना मध्यम होता है और अंडाकार बीज इसका है। इसी तरह हमारे बिहार में जो राजेंद्र अरहर 1 है उसका भी जो परिपक्व होने का समय होता है मैच्योरिटी का जो है वो 260 से 70 दिनों का है, जो 28 से 30 क्विंटल इसका औसत उपज है। ये भी उकठा के प्रति सहिष्णु एवं बंधता मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और जैसा कि पहले भी हमारे किसान भाई बहार उषा 9 नरेंद्र अरहर की खेती मालवीय अरहर 13 जैसे प्रतिभेद प्रति प्रति जो प्रभेद है उसका प्रयोग करते करके अच्छा उपज प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा समान है आकस्मिक फसल योजना, जैसे कभी कभी होता है कि मानसून दगा दे दिया और आदमी का खेत खाली हो रहा है तो सितंबर के मौसम में भी अरहर की खेती कर सकते हैं और उसमें लगाने का समय है 25 अगस्त से 15 सितंबर। जैसा कि हम लोग सितंबर अरहर में 2 प्रभेद अनुशंसित है पूसा 9 और शरद। पूसा 9 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाता है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। और दूसरी वेरायटी है शरद जो 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है, इसका औसत उपज 15 से

0: 16 क्विंटल है, तो ये आकस्मिक फसल के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आकस्मिक फसल के रूप में भी आप अरहर की फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ ही उन्नतशील प्रभेदों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब शस्य क्रियाओं को बताएं कि कौन कौन से शस्य क्रियाएं हमारे किसान भाई अपनाएं जिससे कि उनको इसकी खेती करके लाभ हो।
0: अरहर में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी फसल अच्छी उपज लेने के लिए बीज दर के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे समानतः अरहर की बुआई में हम लोग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज दर से बुआई करनी चाहिए, और यदि हम लोग सितंबर अरहर लगाते हैं तो उसमें हम लोग को बीज दर 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी होगी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे बच्चों को क्या करते हैं कि बहुत से रोगों को बचाने के लिए टीका लगवाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी फसलों में रोग व्याधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप विकसित करने के लिए उन लोगों को भी टीका लगाना होगा, जैसे बीज को टीका लगाना होगा। बीजों को प्रारंभिक अवस्था में उकठा के रोग के को फसल से बचाने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो बुआई के 48 घंटे पूर्व हम लोग को सबसे पहले 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम बेबेस्टिन अथवा 1.5 ग्राम थीरम तथा 0.5 ग्राम बेबेस्टिन के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे एक हेक्टेयर के लिए यदि हम 20 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसको उसी के हिसाब से हम लोग को इससे गुना करके उसको उतना मिश्रण हम लोग को बनाना होगा। और जिन खेतों में दीमक का प्रयोग अधिक हो उसमें फफूंदनाशक से बीजोपचार के उपरांत क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है 20 EC 20 EC दवा 6 से 8 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के बाद हम लोग को बीज को जीवाणु संवर्धन से बीजोपचार जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर होते हैं। यदि हम अरहर के लिए बीजोपचार करने जा रहे हैं तो अरहर बीजों को उपचारित करने के लिए संस्तुत राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जो एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है वह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अरहर में 20 किलो बीज के लिए हम लोग को 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। उसको कैसे हम लोग करते हैं तो 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी आधा लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। घोल को गर्म करके ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह डंडे से हिलाकर मिला देनी चाहिए। बाल्टी या घरे में 10 किलोग्राम बीज डालकर घोल में मिला देना चाहिए ताकि राइजोबियम बीज की सतह पर अच्छी तरह चिपक जाए। इस प्रकार राइजोबियम को कल्चर को सने हुए बीज को कुछ देर छाह में सुखा देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बीजोपचार सायंकाल में करें ताकि तेज धूपों में बीजों को सूखने की संभावना न रहे। धूप से बीजों को सुखाने में राइजोबियम जीवाणु मर जाते हैं जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। उस राइजोबियम कल्चर के उपरांत हम लोग को PSB कल्चर जिसको फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के भांति ही फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर का पैकेट उपलब्ध रहते हैं जिन्हें बाजार या हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवोर में खरीदा जा सकता है। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार की तरह ही PSB कल्चर का बीजोपचार करना चाहिए। एक बात किसान भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि पंक्ति में अपने फसल को लगावें तो हमारा उपज अपने आप बढ़ जाता है। तो खरीफ मौसम में यदि हम अरहर की खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि सितंबर में हम लोग अरहर की बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाई, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग अरहर की खेती में कैसे करें। दलहनी फसल होने के कारण नेत्रजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके जड़ में ग्रंथियां होती है जो वायुमंडल से नेत्रजन स्थिरीकरण कर पौधे को अवेलेबल कराता है। समानतः परिस्थिति में हम लोग 20 किलोग्राम नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस की दर से डालना चाहिए। और सितंबर अरहर यदि हम लोग उसकी बुआई कर रहे हैं तो उपरोक्त उर्वरक की अतिरिक्त बुआई 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें निकाई गुड़ाई के समय कर दें। यदि भूमि में जिंक और सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फेट का प्रयोग करें। एक बात सबसे बड़ा है कि खरपतवार की समस्या हमारे अरहर के खेत में बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार की समस्या से हम लोग कैसे इसको निजात पा सकते हैं। खरीफ फसल एवं लंबी अवधि वाली फसल में खरपतवार की समस्या प्रमुख है। खरपतवार के कारण फसल की पैदावार में 40 से 50% की कमी देखी गई है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में पेन्नीमेथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के

0: उपरांत अंकुरण पूर्व छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमिजाथाइपर जो एक नया मॉलिक्यूल है 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है।
1: तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपने जाना कि आप बीज उपचार कैसे कर सकते हैं, साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और खरपतवार का प्रबंधन आप इसमें कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब, रोग की बात करते हैं, रोग व्याधि भी बहुत इसमें लग सकते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: किसान भाई, अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले हमारे प्रमुख रोगों में उकठा, तना विगलन, बंधता मोजैक चाहे पीला मोजैक या सरकसपोरा पर्णचीतियाँ प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से औसतः हम लोग 15-25% तक नुकसान हम लोग को होता है। इन रोगों को समुचित प्रबंधन हम लोग कैसे करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उकठा रोग के हम लोग लक्षण कैसे पहचानें। सामान्यतः इस रोग का संक्रमण अधिकतर फसल की प्रारंभिक अवस्था 4-5 सप्ताह में होता है, किंतु किसी भी अवस्था के पौधे इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। खेत में यह रोग छोटे छोटे स्थानों में पैच के रूप में कई स्थानों में दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, देखिएगा तो वह मुरझाकर सूख जाते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी की कमी के कारण ये मुरझा गए हों, जबकि वास्तव में खेतों में पर्याप्त नमी होती है। रोगी रोधी के तने का निचला भाग तथा संवहन उत्को जिससे उसको पानी और भोजन के जाता है, जिससे उसका रंग भी काला पड़ जाता है। यदि रोगी रोधी पौधे को उखाड़कर उनकी जड़ों को चीरकर देखा जाए तो उन पर पतली पतली कालियां धारियां दिखलाई पड़ती है। यदि रोगी रोधी पौधे के तने की लंबाई को चीरा जाए तो उसमें से काली धारियां दिखाई पड़ती है, जो कि भूमि की सतह से 3 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग इस जानेंगे कि इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रोकथाम के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। अधिक वर्षों का फसल जैसे 4-5 वर्षों का फसल चक्र अपनाने के साथ खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने और गर्मी के समय में गहरी जुताई करके भूमि में परे रोगजनक नष्ट कर देने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि थीरम या कर्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात से मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि अरहर का फसल चक तंबाकू के साथ किया जाए तो रोग की कमी देखी गई है, क्योंकि तंबाकू की जड़ों से निकलने वाले रोगजनक के हानिकारक होते हैं। यदि अरहर को ज्वार के साथ मिलाकर बोया जाए तो संक्रमण कम किया जा सकता है। ऐसे हम लोगों के पास रोगी रोधी किस्म अब बहुत से आ गए हैं जिसकी हम लोग खेती करके इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं IPA 203, IPA 206, चाहे नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 3। उसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग अरहर में बंधता मोजैक रोग है। इसमें इसके लक्षण होते हैं, रोगी पौधे खेतों में हल्के हरे दिखलाई पड़ते हैं तथा स्वस्थ हरे पौधों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्राय रोगी पौधे की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, जिस पर अनियमित आकार के हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे पर फूल और फल उत्पन्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उनमें से शाखाएं निकल फूटती है जिससे पौधे झाड़ी नुमा दिखाई पड़ते हैं। प्राय पौधे की कुछ शाखाएं रोग संक्रमित होती है तथा बाकी शाखाएं से बिल्कुल स्वस्थ होती है। रोगी शाखाओं पर फल फूल नहीं आते हैं, जिससे स्वस्थ हिस्से में फल फूल आते हैं। इसके प्रबंधन में हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले खेत में सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस खेत में अरहर को बोना है उसके आसपास अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधे को उखाड़ देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म जो हम लोग बताए हैं IPA 203, 206, मालवीय अरहर 13, ये प्रभेदों को लगाना चाहिए। खेत में जो ही रोगी पौधे दिखाई दें तो इमिडाक्लोरोपीड, रोगी पौधे के साथ इमिडाक्लोरोपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर जो कीड़े दिखाई दें उसे जैसे हम लोग को सफ़ेद मक्खी दिखाई दे उसे ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। उसी तरह जैसे कीट प्रबंधन अरहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फली छेदक जो कीड़ा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें कीट का व्यस्क जो रहता है वो पीले भूरे रंग का होता है एवं सफ़ेद पंख के किनारे काले रंग की पट्टी बनी होती है। इसके पिल्लू हरे रंग के होते हैं जिनके पीठ पर गहरी भूरी रेखाएँ दिखाई देती है। इस कीट के पिल्लू के प्रारंभ में पत्तियां को खा जाती है तथा बाद में फलियों को छेद कर इसके दाने को भी खा जाती है। इसके प्रबंधन में हम लोग को ध्यान रखना है कि खेत में को गर्मी में हम लोग गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें तथा

0: सबसे बड़ा है कि 10 फेरोमेन फंदा जिसको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का ल्योर लगा के प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। हम लोग प्रकाश फंदा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हम लोग जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 टी आकार का बर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिससे कि वो हमारा जो जो पहले जो कौवा या कोई जानवर हो, कौवा जो हमारा जो है वो भी हमारा खेत में जो इसका जो लियो इसका जो लार्वा है उसको खा जाए। खरीफ फसल में इसके अतिरिक्त एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे जैविक दवा है NPB 250 एली प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। अरहर के लिए 500 के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से NPV वायरस गोल का छिड़काव कर फली छेदक अंडे देने के समय कर सकते हैं। दोबारा अंडे देने की स्थिति में 15 से 20 दिनों के बाद NPV का छिड़काव करें। यदि फली छेदक का संक्रमण अधिक हो तो अरहर के पौधों को जोर से हिलाकर लार्वा को पॉलीथीन की चादर या जूट के बोरी में जमा करके नष्ट कर दें। या एक दवा आती है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव फली बनाते समय करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये इस विधि से यदि हम लोग अरहर की खेती करें तो अरहर फसल की पैदावार जो हमारा जो उन्नतशील प्रभेद है जो उससे हम लोग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना अरहर के बारे में, अरहर की खेती और वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इस बहुत ही अच्छे विषय के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार। और दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपसे आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है आप उन्हें सुनेंगे और अपनी खेती में ज़रूर उसे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना?
3: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त।

0: बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री अन्न की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: मुझे डर लगता है। वो सब लड़कियां छात्रावास में रहती थीं और उस दिन सुबह नदी के किनारे इकट्ठी हुई थीं। कल बत्ती बंद करने के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी थी। लाल स्वेटर वाली लड़की ने पूछा, मुझे तो बहुत डर लगा, आखिर वो क्या था? मैं नहीं जानती, शीला ने कहा। ललिता खोई खोई सी थी। उसने धीरे से कहा, जानती हो, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ मेरे पिताजी से बहुत डरती हैं। वो शराब पीते हैं और रात को जब घर लौटते हैं तो हम सबको बहुत डर लगता है। हमारे घर तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, शीला ने कहा। मेरे पिताजी माँ से बहुत डरते हैं। मेरी माँ बहुत सख्त हैं। वे सब अपने अपने डर के बारे में बातें करती रहीं। उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई अध्यापिका उन्हें कुछ करने पर

न करने पर डांट देंगी। कभी उन्हें लगता कि अगर उन्होंने कक्षा में किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो उनकी सहपाठी ने उन पर हंसेंगी। इस डर से वे कक्षा की चर्चाओं में भाग न लेती। कभी कभी उन्हें इस बात का डर रहता कि पीटी, खेल अथवा नृत्य की कक्षाओं के लिए उन्हें देर ना हो जाए। और परीक्षा का भय तो सदा ही लगा रहता। किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए तो उनके माता पिता उनके प्रगति पत्र को देखकर क्या कहेंगे। ये भी एक आम भय था। और कुछ एक ने कहा कि जब उनकी तुलना उनके भाई बहनों अथवा किसी से भी की जाती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वे ये जानते थे कि उनके माता पिता निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। इन लड़कियों को छोटे छोटे भय खाए जा रहे थे। परंतु क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि वे सब लोग भविष्य में कुछ होने की आशंका को लेकर भयभीत थे और वो सब भी उनके अपने दिमाग की उपज थी। पहले तो दिमाग में विचार उठता है कि कुछ होगा और उसी समय मन में भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार का भय और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा विचार है कि भविष्य में कुछ हो सकता है, या फिर एक याद है कि पहले कभी ऐसा हुआ था। हम सदा इससे बचने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह भय या तो भविष्य में होता है या भूत में, कभी वर्तमान का नहीं होता। इस पर भी सोचो कि जब तुम डर से भरे हुए होते हो तब क्या होता है। सोचो कि तुम्हारे मन में इस बात का डर है कि तुम अपने सहपाठियों में लोकप्रिय नहीं हो, या ये सोचकर कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, या यदि वो तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते तब क्या होता है। तुम हर बात में उनकी नकल करने लगते हो, है ना? तुम हर बात में, जैसे उनके कपड़े, उनका बातचीत करने का ढंग, उनकी भाषा, उनकी बातें, उनकी चाल, काम करने का ढंग आदि में उनकी देखा देखी करते हो। अगर तुम अलग ढंग से कपड़े पहनना या कुछ और करना चाहो तो भी अपने विचारों को दबाकर वही करते हो जो और करते हैं, क्योंकि तुम किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों से आगे बढ़कर तुम्हारा सोचने का ढंग भी औरों के समान हो जाता है, क्योंकि तुम औरों से अलग कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तुम्हारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भयभीत होकर तुम सृजनात्मक शक्ति खो बैठते हो। अगर तुमने अपने आप को सदा दूसरों के भय रूपी पिंजड़े में बंद रखा तो ये कभी ना जान पाओगे कि स्वतंत्रता क्या होती है। और ध्यान रखो, ये बात बड़ों पर भी उतनी ही लागू होती है। कई पुरुष और स्त्रियां समाज के विचारों से बहुत डरते हैं। उनके मन में सदा इस

का भय रहता है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। इस दृष्टि से वे बिल्कुल बच्चों के समान हैं। वे भी स्वतंत्र और खुश नहीं होते और इसी कारण उनकी मौलिकता तथा सृजनात्मकता नष्ट हो जाती है।

0: कि एक दिन हम उस भय से मुक्त हो जाएंगे। क्या ये उचित है कि हम भय से भागकर कोई खेल खेलें या फिर कोई मजेदार सिनेमा देखें और ये आशा करें कि उससे भागकर हम भय को दूर कर सकते हैं? अथवा क्या हम उसे दबा लें और रोज अपने आप से कहें, मैं बहादुर हूं, मैं किसी से नहीं डरता, जबकि वास्तविकता ये है कि हम डरे हुए हैं। अथवा क्या ये अधिक बुद्धिमानी का कार्य होगा कि तुम हर घटना को समझने का प्रयत्न करो जब वो घटती है, ताकि भय की जड़ तुम्हारे मन में पनप नहीं ना पाए और ये छोटे छोटे भय तुम्हारे दिल में जमा होकर एक बड़े डर का रूप ना ले लें। कुछ दिन प्रयत्न करो और देखो कि क्या होता है। साथ ही घर तथा स्कूल में इस विषय पर चर्चा करो। अपने भय को दूसरों के साथ बांटना काफी मजेदार हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के,
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि

0: विद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें। और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
2: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
2: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
2: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउन डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउन डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर

0: 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं।

0: खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: FM Green, हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो सालों भर मिलता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा भी होता है। शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें केला पसंद नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से केले की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि प्रकाश। मैम, आप हैं फल विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
5: तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में केला की कौन सी प्रमुख किस्में हैं जो लगाई जाती है?
6: बिहार में केले की काफ़ी सारी किस्में लगाई जाती हैं। इसमें से कुछ पारंपरिक किस्में भी हैं और कुछ उन्नत किस्में भी हैं जो लगाई जाती हैं। पारंपरिक किस्मों में चिनिया, मालभोग, अल्पान, कोठिया, ये सारी किस्में हैं। और इसमें से जो चिनिया, मालभोग और अल्पान है, ये जनरली हम पकाकर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोठिया और गोरैया, ये जो है कोठिया, मुठिया और गोरैया, ये तीन जो हमारी किस्में हैं, ये सब्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ उन्नत किस्में हैं जो अभी किसान भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है G9 वैरायटी, या फिर ग्रैंड, जिसे ग्रैंड नैने बोलते हैं, और G9 के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार में खासकर की नौगछिया और भागलपुर से के आसपास के जिलों में ये G9 वैरायटी आजकल किसान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा जो लोकल वैरायटीज है, हमारी पारंपरिक वैरायटीज है, जैसे कि चिनिया, अल्पान और मालभोग, स्वाद की वजह से ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं उसके लिए। तो किसान भाई अपने दोनों तरह की किस्में लगाते हैं।
5: जी मैम, और अब बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे की जा सकती है और किस प्रकार की मिट्टी उचित होती है केला के फसल के लिए।
6: तो केला जो है वो केला की जो मिट्टी की ज़रूरतें हैं बहुत खास नहीं है केला को, लेकिन एक समतल की मिट्टी चाहिए जो कि दोमट होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए, और इस मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 तक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो मिट्टी है उसमें पानी रुके ना, निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पर्याप्त नमी, लेकिन वो पर्याप्त नमी भी रहे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बलवी मिट्टी है जिसमें नमी ना रहे, या फिर ज़्यादा गीली मिट्टी हो जिसमें अधिक नमी रह जाए। मिट्टी सबसे अच्छी होगी अगर दोमट मिट्टी है और उपजाऊ है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी केले की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। जब किसान भाई केले के बगान लगाना चाहें तो उसके पहले उसमें अच्छा होगा कि अगर कोई हरी खाद की वाली फसलें जैसे सनई, ढेंचा या लोबिया लगाकर उसे मिट्टी में मिला दें, तो इससे मिट्टी की जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो अच्छा बढ़ जाएगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद खेत की अच्छी तरह 3-4 बार जुताई कर ले, अप्रैल मई के महीने में उसे खेत को

0: सूरज की धूप लगने दें ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाए और जो मिट्टी है हमारी वो कीटाणु रहित हो जाए। इसके बाद केले के पौधे लगाने के पहले 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लें, जो कि 60 सेंटीमीटर कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा हो। इन गड्ढों को खोदकर उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें और फिर उसे 15-20 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उस गड्ढे को खुली धूप में छोड़ने से जो भी अंदर के जो भी कीड़े हैं, मकौड़े हैं या फिर किसी तरह के कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद जब केला का पौधा आप लगा रहे हों तो उस मिट्टी में आप 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम की खली तथा 100 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट डाल दें। इसके अलावा 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाकर उस गड्ढे को आप भर दें और जो सकर्स लगाएं वो गड्ढे के बीचों बीच लगाएं।
1: मैम, अब आप हमें ये बताइए कि पौध प्रवर्धन क्या होता है, साथ ही पौधा लगाने का समय, उचित समय और रोपण की उचित दूरी क्या होनी चाहिए।
0: केले का पौध प्रवर्धन हम मेनली सकर्स के थ्रू करते हैं। सकर्स कहें तो जो आप केले के पौधे लगाते हैं उसके साइड से जो नए पौधे होते हैं उसे ही हम सकर्स कहते हैं। और ये सकर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सकर्स और दूसरे होते हैं स्वॉट सकर्स। तो जो हमारा केला को हम जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर स्वॉट सकर्स या तलवारनुमा सकर्स को इस्तेमाल, जिसे हम तलवारनुमा सकर्स बोलते हैं हिंदी में, उसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो ये स्वॉट सकर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मदर प्लांट होती है उसके पास होते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें जो फल लगते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बात अब आती है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वो स्वॉट सकर है या वाटर सकर है। तो आप देखेंगे कि जो केले के साइड से जो सकर्स निकलते हैं उसमें कुछ सकर्स होते हैं जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और कुछ होते हैं जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती है, पतली होती है और नुकीली होती है। तो जो नुकीली पत्तियां वाले सकर्स होते हैं हमें वही सकर्स को लेना चाहिए पौध प्रवर्धन के लिए। इसके अलावा जब हमने सकर्स ले लिया है तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये सकर्स लाएं तो किसी ऐसे खेत से लाएं जहां पे पहले से कोई किसी तरह की बीमारी ना हो, जिस खेत में साफ सुथरा खेत हो और वहाँ जो केले लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की बीमारी है तो वहाँ उस खेत से नए सकर्स लेने से किसान भाइयों को बचना चाहिए। अब इन सकर्स को लाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि सकर्स आपके हेल्दी सकर्स हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा छोटे सकर्स आप ले आएँ। कम से कम वो सकर्स 1.5 से 2 किलो के होने चाहिए। इसके अलावा जब आप सकर्स को आप लगाते हैं तो उसे गड्ढे में बहुत ज़्यादा अंदर भी ना डालें। अभी जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो सकर्स के अलावा हम टिश्यू कल्चर के पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा G9 वैरायटी के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे किसानों को दिए जाते हैं। तो जो ये टिश्यू कल्चर के पौधे होते हैं वो पौधे अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर के पौधों से ही पौध प्रवर्धन करें, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें किसी भी तरह की रोग व्याधि नहीं होती है और वो उसका जो उपज होता है ये देखा गया है कि नॉर्मल जब हम वाटर स्वॉट सकर्स या नॉर्मल खेत के सकर्स से जब हम ग्रो करते हैं और जब हम टिश्यू कल्चर के पौधे से ग्रो करते हैं तो देखा गया है कि जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उनका उपज ज़्यादा होता है। तो अगर आपके इलाके में टिश्यू कल्चर वाले पौधे मिल रहे हैं तो कृपया आप उसी को पहले लगाएं। फिर ये जो सकर्स हम लगाते हैं, ये केले को हम सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो जून जुलाई या अगस्त के महीने में लगाएं तो उसमें सिंचाई की प्रबंधन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है तो इस वक्त किसान ज़्यादा अच्छे से वो पौधे लगने की जो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और सकर्स जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इन पौधों को जो लगाना है कितनी दूरी पे लगाना है, तो दूरी की बात करें तो अगर किसी बौनी किस्म को लगा रहे हैं तो आप 1.8x1.8 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। और अगर बहुत लंबी किस्में हैं जैसे मालभोग हैं, चिनिया हैं, ये जो लंबी किस्में हैं इनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर x2 सेंटीमीटर या 2.5x2.5 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं।
1: जी मैम, अब आप हमें ये बताइए कि सिंचाई के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही उर्वरक प्रबंधन किस

0: प्रकार से करना चाहिए?
1: केले के पौधों को उनके पूरे जीवन चक्र में लगभग 900 से 1200 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है, और यह पानी की ज़रूरत या तो बारिश से हो जाए या फिर आर्टिफिशियली इरिगेशन देके सिंचाई करके दी जाए, दोनों से दिए जा सकते हैं। और इसमें हर चरण, विकास के हर चरण में पानी की ज़रूरत होती है। ये केला सूखा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पर तथा ठंडी के मौसम पे हर 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा अच्छे हों। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन में एक और चीज़ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है कि जब हम सिंचाई करें तो या तो हम ड्रिप इरिगेशन लगा दें जिससे कि जितनी ज़रूरत है हर पौधे को उतना ही पानी दिया जाए, या अगर फ्लडिंग या चैनल इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वो पानी केले के पौधों के पास ज़्यादा दिन तक रुका ना रहना चाहिए। ये पौधों को अगर पानी रुका रह जाएगा तो पौधों के विकास में रुकावट कर सकता है। उसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन केले में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला पोटेशियम का एक हैवी फीडर है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम चाहिए। अगर बात करें तो एक केले के पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में 300 ग्राम नाइट्रोजन, 45 से 50 ग्राम फॉस्फोरस और 400 ग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसमें से जो खाद है और पौधे लगाने के समय ही हम खाद 20 किलोग्राम खाद और 1 किलोग्राम नीम की खली डाल सकते हैं, और साथ ही जो फास्फोरस है वो भी हम जब हम पौधे लगा रहे होते हैं उसी वक्त डाल दें। उसके अलावा जो नाइट्रोजन और पोटैश है ये आप 5 विभाजित खुराक में डालें। जैसे कि अगर आपने पहले लगाने के पहले महीने में नाइट्रोजन डाला है, फिर आप तीसरे महीने में डालें, पांचवें महीने में डालें, फिर सातवें महीने में डालें। इसी तरह से पोटेशियम का भी है कि अगर आपको 400 ग्राम पोटेशियम डालना है तो आप उसे 5 खुराकों में विभाजित करें, और पहले महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने, सातवें महीने और आखिरी खुराक जो फूल निकलते हैं उस वक्त आप डालें। इस तरीके से खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो इससे आपके जो केले हैं उसकी वो फली बहुत अच्छी और भरी हुई होंगी और आपका जो उपज है वो ज़्यादा अच्छा आएगा।
2: और मैम, अब हमारे किसान भाई बहनों को आप ये बताइए कि केले की फसल में उसके तुड़ाई तक क्या क्या ऐसे विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है?
1: तो केले में काफ़ी सारे कार्य होते हैं जो बुआई से लेके फसल कटने तक हमें करना होता है। उसमें से सबसे पहले आती है डीलीफिंग, यानी कि पत्तियों को हटाना। समय केला केले के पौधे से अतिरिक्त पत्तियों को समय समय पर हटाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके जो पुराने पत्तियां होती है वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं, तो आप उन्हें समय समय पर हटाकर खेत से बाहर कर दें, ताकि वो क्या होता है कि जो ये सूखी हुई पत्तियां होती है इसमें कीड़े मकौड़ों का घर हो जाते हैं। तो अगर वही सूखी पत्तियां वहीं गिरी रहेंगी तो उसमें कीड़े ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप केले के पत्ते हटा, जो भी सूखे हुए पत्ते हैं आप उन्हें हटाकर बाहर निकाल दें। दूसरा आता है वीडिंग, खरपतवार निराई गुराई। केले के जो बगान होते हैं उसमें निराई गुराई करना एक बहुत बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी खरपतवार होते हैं उसमें भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं, उनको एक घर मिल जाता है, और केले में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बीमारियों को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए केले के खेत को आप जितने साफ तरीके से साफ सुथरा रख सके उतना अच्छा होगा केले के अच्छे पैदावार के लिए। उसके बाद आता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग होता है कि जो नर पुष्प होते हैं, आप देखेंगे जब एक गोंद में से सारे फल निकल जाते हैं, उसके बाद लास्ट आखिर में एक फूल बचा रहता है, कली बची रह जाती है, तो उसे भी हमें हटा देना चाहिए, ताकि जितनी भी एनर्जी है या जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो केला वो फल में दे सके और फल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सके। इसके बाद आता है फूल हटाना। ये आप अगर छोटी बौनी किस्में हैं और फूल तक अगर आपके हाथ पहुंच रहे हैं तो आप जो सूखे हुए फूल हैं

0: जो केले के फली लग गई है उसके नीचे जो सूखी फूले फूल है वो भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आता है गुच्छों को ढकना या बंच कवरिंग, जिसे बंच कवरिंग भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो जब घोंद बाहर निकल रहा होता है उस वक्त ही हमें गुच्छों को, जो गुच्छे बाहर आ जाते हैं पेड़ से, तो हमें उसे ढकना चाहिए। वो ढकने के लिए या तो आप पीपी बैग्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसे जनरली हम पीपी बैग से, या फिर छिद्र युक्त पॉलिथिन, या फिर नॉन वुवेन बैग से ढक देते हैं। ताकि इससे क्या होता है कि जो जो फल हैं उसमें एक तो डायरेक्ट सन धूप नहीं लगती है, और उससे टेम्परेचर, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो स्केरिंग बीटल होता है, जो आप देखे होंगे कि केले के फल पे धब्बे हो जाते हैं, वो स्केरिंग बीटल के वजह से होती है। और जब अगर हम बंच कवरिंग कर दें तो ये जो स्केरिंग बीटल से नुकसान होता है, जो केलों पे धब्बे होते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। बंच कवरिंग करने से जो किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्केरिंग बीटल होते हैं उसी की रोकथाम के लिए किसान भाई कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। बट इस स्केरिंग बीटल को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस बंच को ढक दें। जब बंच निकल रहा है उसी वक्त स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप उसे ढक देंगे तो वो स्केरिंग बीटल उसे नुकसान ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको कीटनाशक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा आता है डी सकरिंग, या फिर जो जो सकर्स होते हैं। आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके चारों तरफ छोटे छोटे और नए पौधे आते रहते हैं, तो आपको किसान भाइयों को ये छोटे छोटे जो सकर्स निकलते रहते हैं उसे समय समय पर हटा देना चाहिए। क्योंकि ये सकर्स क्या होते हैं कि अगर आप इसे भी साथ साथ में ग्रो करने देंगे तो ये सकर्स भी मिट्टी से वो खाद लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे जो आपने मेन पौधे के लिए दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे सकर्स को आप हटा दें, और एक बार जब फूल आ जाए, फल आने लगे, तब रेटूनिंग के लिए आप एक सकर को रखें, उसे बढ़ने दें। जब फूल आके फल आ जाए उसके बाद आप एक सकर को मेंटेन करके रख सकते हैं, जो आप अगले साल जिससे आप अगले साल फसल लेने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आगे बताना भूल गई थी कि अगर आप केले की खेती करते हैं तो 3 बार से ज़्यादा एक ही सकर से आप ग्रो नहीं करेंगे। मतलब 3 रेटूनिंग के बाद आप फसल चक्र अपनाएं और उस खेत को पूरा खाली करके उसमें कुछ और फसल लगा दें। चाहे आप मक्का लगा दें, या फिर धान लगा दें, गेहूं लगा दें, कुछ भी लगा दें, और उसके बाद 1 साल का गैप छोड़ें, उसके बाद ही दूसरा फसल लगाएं उसमें। फिर आता है एक प्रॉपिंग, यानी कि सहारा देना। जब केले के घोंद निकल जाते हैं और फलियां बड़ी होने लगती हैं तो केले के पेड़ फलों के भार से झुक जाते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि केले के पौधे को सहारा दिया जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बांस से हम केले के पौधे को सहारा दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि फल पेड़ गिरते नहीं, झुकते नहीं हैं और ना गिरते हैं। बहुत बार संभावना होती है कि जो फल है वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो पौधे झुक जाते हैं और झुककर गिर जाते हैं, तो इससे फलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जब फल आ जाए, पूरा गोंद बाहर आ जाए और सारे फल निकल जाए, तो बांस की सहायता से पौधों को आप सहारा दे दें।
1: मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि तुड़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: तो जब केले की तुराई की बात होती है तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तुराई करें वो जब केले परिपक्व हो जाए उसके बाद ही करें। बहुत बार किसान क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम दूर कहीं किसी दूर बाज़ार में हमें केले बेचने हैं तो वो अपरिपक्व स्टेज पे ही केला को तोड़ लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप परिपक्वता के पहले उसे तोड़ेंगे तो वो इथिलीन देने से वो पक तो जाएगा, या फिर रखे भी वो पक जाएगा, लेकिन जो उसका स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। जो अंदर की जो फली है, वो उसका जो गूदा है उसपे ना वो स्वाद आएगा ना ही वो उतना भरेगा। तो अभी आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इंतज़ार करें कि जब वो केला परिपक्व हो जाए तभी तोड़ें। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे कि ये केला परिपक्व हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप केले का एक एक जो

0: फली है उसे देखें, तो जब कच्चा रहता है तो आप देखेंगे वो उसके चारों तरफ किनारे नुकीले होते हैं, मतलब किनारे गोल नहीं होते हैं। तो जब केले परिपक्व हो जाते हैं तो उसके किनारे गोल हो जाते हैं, केला पूरा ही गोल हो जाता है। अगर केले गोल हो चुके हैं तो यानी कि वो परिपक्व हो चुके हैं, वो केले आपको दिखेंगे वो गहरे हरे रंग से वो हल्के हरे रंग की तरफ उसका रंग, छिलके का रंग बदलने लगता है। तथा अगर कुछ केले गोंद में कुछ केले पीले पड़ने लगते हैं तो समझना चाहिए कि अब ये केले परिपक्व हो चुके हैं और हम इसे इसकी तुराई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश किस्मों में 90 से एक फूल निकलने के 90 से 100 दिन के 120 दिन तक में केला परिपक्व हो जाता है और आप इसकी तुराई कर सकते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से मैम ने बताया आप उस प्रकार से केले की खेती कर सकते हैं, और जिन भी बातों का ध्यान रखने की बात मैम ने कही उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके केले के जो फसल होंगे वो बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे उत्पादन का आप लाभ उठाएंगे। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही आप अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
7: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
5: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
7: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
10: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और

न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री यानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच

0: कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
4: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
0: मैम, जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
5: हाँ, बिल्कुल। जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल की तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछुआ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
0: तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
5: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई, उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से

0: साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों जो पत्ते के किनारे किनारे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
1: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
0: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नजर आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज़्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
1: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई इवन हम जो वैज्ञानिक है वो भी हमें छिड़काव करना रहता है, तो हम 4 बजे शाम के बाद ही

0: तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
1: जी मैम। मैम तिल दो तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
0: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही हैं किसान। जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे। काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे, और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है, और ये बहुत पॉपुलर है। और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा, तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया खरीफ में, तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है। काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पस से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया, तो काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था। मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
1: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम।
0: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
1: जी मैम। तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
0: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज्यादा हो गया। क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना, मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है, तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे, उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज बीज उपचार करके नहीं लगाया, आपके 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है, तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तीले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तीला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया, तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है, और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान, और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है, लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में। भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है, और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नज़रिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज़ को, जो महिलाएँ हैं या फिर लड़कियाँ हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है, उन्हें, आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, हाँ, हाँ। इसे ही कहते

सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रू नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना आज के समय में भी, आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नु भंडारी के द्वारा लिखा गया है और मन्नु भंडारी की भी जो शख्सियत है ना वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्ही किताबों में से एक है। और ये हिंदी की आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री के पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक। मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का

प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है, और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है, और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को, यानी कि टेढ़ी लकीर को, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें, और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे, और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए, और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर
इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम, आपको अच्छा लगा होगा, और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की, उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों

0: और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
5: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं से इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है। कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें। तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
12: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के 8 साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें, और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6 साल 7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले या आप एक दो फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं अपनी गृह वाटिका में।

0: आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है, सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हम हमारा एरिया में, हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, ना कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में, या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें। अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो, और जब ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हों 7 साल 8 साल 10 साल के बाद, वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें। दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं, तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2 से 3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो, और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है। और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है, हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
1: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस
0: हाँ
1: कम होनी चाहिए,
0: मतलब हाँ कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे। दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए, इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है।
1: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान किन किन बातों को ध्यान रखने की, बात तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को, पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसके किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।
0: सबसे पहले मैं बता दूं कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सभी किसी भी चीज, किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में किन किस्मों का ज्यादा डिमांड है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे बिहार में आम का ही अगर फसल लेते हैं, तो इसमें मालदा, जरदालू और गुलाब खास, कृष्णभोग, बम्बई, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आम्रपाली, इन सब किस्मों की ज़्यादा डिमांड है, तो हमें इन किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह वाटिका में लगाना चाहते हैं तो वैसे वृक्षों का, वैसे फल वृक्षों का चुनाव ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर ज़मीन कम होती है गृह वाटिका में। अगर एक ही आम के पौधे बहुत फैल जाएंगे तो बाकी चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते, इसलिए उन जगहों में जहाँ के गृह वाटिका में आप लगाना चाहते हैं या एक दो पौधे लगाना चाहते हैं, अगर आम की लगाना चाहते हैं तो उसमें आम्रपाली जो कि कम बढ़ती है, उसका फैलाव भी कम होता है, उन किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा वैसे फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, इन सब चीज़ों का आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं, और बगीचे भी अगर लगाना चाहें तो केला, पपीता में भी किस्मों का चुनाव आपको करना पड़ेगा, और उन किस्मों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी हमारे क्षेत्र में कौन सा, हमारे क्षेत्र का जो जलवायु है किस किस्मों के लिए अनुकूल है, इसलिए इन बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेब बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपका क्षेत्र का जो जलवायु है वो सेब के अनुकूल नहीं है, इसलिए वैसे पौधों का चुनाव ना करें ताकि आपको फल ही ना दे। इसलिए अपने जलवायु के अनुकूल, अपने मिट्टी के अनुकूल और अपने स्थान विशेष, जगह के कितना भी भूमि क्षेत्र है उसके अनुकूल, तथा हमारे क्षेत्र में जिनका डिमांड है उसके अनुकूल आप फल वृक्षों का और उनके किस्मों का चुनाव करें, ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा 5 से 7 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी और आप नुकसान में रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और फल के मांगों को देखते हुए फल के पौधे लगाएं, और 6-7 साल तक आप अगर अपने मेहनत को

0: ही गंवाना नहीं चाहते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैम, जब बात होती है नए पौधे लगाने की, तो उनकी विधि भी बहुत ज़रूरी होती है जाना, क्योंकि जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसकी विधि जानना ज़रूरी होता है। अगर विधि जान लेते हैं तो हम आराम से बनाते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे ही पौधे लगाने की विधि हम जानना चाहते हैं, ताकि हम 6-7 साल बाद पछताएं नहीं और हमें फल मीठे मीठे मिले।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, पौधे लगाने की वैज्ञानिक विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैडम पौधा मैंने लाया, बहुत अच्छे से पौधे थे, लगाया और 2 महीने के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया, वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है जब पौधे पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको लगाते हैं और उनको पता चलता है कि जो पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि पौधे जैसे कि आप फल वृक्ष, हमारे जलवायु की बात करूँ तो फल वृक्ष लगाने का समय हमारे यहाँ मध्य जून से लेकर अगस्त सितम्बर महीने तक लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो लगाने के पहले 2 महीने, 1.5 से 2 महीने पहले इसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब जो भी मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी एक नियमित नियत दूरी रहती है, कितनी दूरी पर आप पौधों को लगाएं। तो आप आम में जो ज़्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, और जो आप कम बढ़ने वाली किस्में हैं उसको 4 से 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, वो सब ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के पहले आपको गड्ढा करना है, जो गड्ढे की तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी जो करनी है आपको अप्रैल माह में शुरू कर देनी है। और अप्रैल माह में आप 1-3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा करें, या 8 मीटर की दूरी पर, या फिर आप 5 मीटर की दूरी पर करें, यह निर्भर करता है आप किन किस्मों को चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा करें, और जो गड्ढे की मिट्टी है उसको बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, गड्ढे को खुला छोड़ें। अप्रैल माह में धूप बहुत तीक्ष्ण होती है और जिसके कारण उस तीक्ष्ण धूप से जो गड्ढे के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और बाहर जो आपने मिट्टी निकाली है अगर उसमें भी कीड़ों के अंडे रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से वो कड़ी धूप में आप 3 से 4 सप्ताह उसको छोड़ दें, यूं ही खुला छोड़ दें। उसके बाद उस मिट्टी में आप, अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आप 30 से 35 केजी कंपोस्ट, 100 ग्राम फ्यूराडॉन 3 mg, और 4 से 5 केजी आप नीम या अंडी की खल्ली को लगाएं और डालें, मिक्स करें उसमें, और उसको मिक्स करने के बाद जो है उसको गड्ढे में भर दें। गड्ढे में भरने के बाद आप पानी से उसको अच्छी तरह से सिंचित करें गड्ढे को, ताकि वो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाए गड्ढे में, और जब पूरे अच्छी तरह से भींग जाए, बैठ जाए, तो पुनः एक बार उसमें अच्छी तरह से सिंचित करें। जब दूसरी बार सिंचित करेंगे तो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाएगी, और उसके बाद ये ध्यान रहे कि मिट्टी की जो उसमें गड्ढे जो है उसके 3 से 4 इंच ऊँची तक वो मिट्टी रहे। उसके जब पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद जब दूसरी सिंचाई कर देंगे तब फिर क्या है, बीच में गड्ढा करके आप पौधे उसमें लगाएं और हल्के से दबा दें। ध्यान रहे कि बीच वाला भाग थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश होने वाली रहती है, अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो बारिश के समय में उसके जड़ के आसपास जल का जमाव होगा, जो कि नए पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। और मैं बता दूं, किसान भाइयों अधिकतर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो पौधे खरीद के लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, उसके बाद गड्ढा लगाया, खाद डाला, गोबर डाला, तुरंत पौधे लगा करके पानी डाल दिया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही आप तुरंत खल्ली डाल के खाद डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे उसमें से गर्मी उत्पन्न होता है, और तुरंत अगर पौधे आप लगाए हैं तो उसमें जड़ के जलने की समस्या रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आप 1 महीने अप्रैल के महीने में गड्ढे की खुदाई करें, 3-4 हफ्ते उसको छोड़ दें जैसा मैंने बताया, उसके बाद से आप पौधे लगाएं, पानी 2 बार पानी डाल करके, हालांकि उस समय तक बारिश शुरू हो जाती है तो अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बारिश में पूरे होने दें, अच्छी तरह से मिट्टी बैठने दें, और जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पौधे को लगाएं, पौधा आपका कभी नहीं मरेगा, और इस तरह से पौधे के लगाने की विधि है।
0: तो मैम जैसे कि आप

0: आपने कहा कि क्षेत्र मतलब हर किसानों को अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही पौधे का चयन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में किस तरह के उर्वरक देने चाहिए फल के पौधों को।
1: देखिए पहले क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ, हमारा क्षेत्र जो है बिहार राज्य जो है उसमें आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, शरीफा, इन सब चीज़ों की खेती आराम से हो सकती है। अगर आपका कुछ हद तक कुछ हमारे कुछ एरिया में जैसे सीमांचल एरिया में जहाँ की आर्द्रता ज़्यादा रहती है वहाँ नारियल की भी खेती हो सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। इन सब की खेती आप चाहेंगे सेब, खुबानी, आड़ू, ये सब लगाना, तो इन सब की खेती यहाँ संभव नहीं है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। अब रही खाद उर्वरक की बात, मैंने बताया कि जब पौधे आप लगा रहे हैं तो लगाने समय में आप कंपोस्ट डाले हैं, खल्ली डाला है, और उसके साथ जो है ज़्यादा नहीं लगाते, इसमें 250 ग्राम ही आप DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं उसको डालें, और फ्यूराडोन मैंने बताया कि 100 ग्राम डालें जो कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो थोड़ा सा मार देता है, वो ग्रब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना डालें, और अगले 6 महीने तक आप उसमें कोई खाद ना डालें।
0: अच्छा,
1: जब आप देखने लगे, मैं आम के को मुख्यतः बता रही हूँ, हालांकि सभी फल वृक्षों के जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, जैसे पपीता के अलग होंगे, अमरूद के अलग होंगे, आम के अलग होंगे, लीची और आम के लगभग समान होते हैं क्योंकि उनका मौसमी के अलग होंगे, नींबू के अलग होंगे, सभी पौधों के जो है वो उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। मैं आम और लीची को के बारे में भी बताऊंगी, अपने लगाने के 6 महीने के बाद आपको कोई भी उर्वरक नहीं देना है। जब 6 महीने के बाद जैसे आपने जून जुलाई में लगाया, आपको ठंडे के सीजन तक आपको कोई उर्वरक नहीं देना है, लेकिन सिंचाई आपको नियमित रूप से करनी है। जब आप फिर फरवरी का महीना आता है तब उसमें नए कोपल फिर से आने शुरू होते हैं और तब आपको लगता है कि जड़ इसके अच्छी तरह से जम चुके हैं, फिर आप उसमें जो है वो पौधे उसमें जो है खाद और उर्वरक देना शुरू करें। 1 साल के पौधे में मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बताऊंगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए आप बहुत सारे उर्वरक यूज कर सकते हैं और सभी उर्वरक में इनकी मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए मैं किसी एक उर्वरक का नाम नहीं लूंगी, मैं उनके तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उनके मात्रा के बारे में बताऊंगी। तो पहले साल में एक पौधे में आपको लगभग 6 आम के पौधे में लगभग 60 से 70 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और 30 से 40 ग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है, उसी तरह से 40 से 50 ग्राम या 40 से 60 ग्राम प्रति वर्ष 1 साल के पौधे में पोटास की ज़रूरत होती है, और ये मात्रा जो है हम हर साल बढ़ाते जाते हैं, पहला साल इतना, दूसरे साल उसका दुगुना, तीसरे साल उस तिगुना, इसी तरह से 10 साल तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, और 10वें साल जो हमारी मात्रा होती है नाइट्रोजन की मात्रा 700 से 800 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 400 से 600 ग्राम और पोटास की मात्रा जो है वो 600 से 800 ग्राम प्रति पौधे होती है, और ये निर्भर करता है अगर आपकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन में कम है तो थोड़ा सा आप हायर साइड जो ज़्यादा अधिकतम मात्रा है वो देंगे, अगर आपके यहाँ जो है नाइट्रोजन पोटाश की मात्रा मिट्टी में सही है तो आप उसको कम वाली मात्रा दे सकते हैं, तो इस तरह से आप उसका उर्वरक का उपयोग करेंगे, और ये उर्वरक आप 2 भागों में बांट के दें, 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दें, तब आपका फलन भी अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार भी अच्छा होगा।
0: कहने का मतलब है कि जब जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें कम खाना देते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता और बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए। उसी प्रकार पौधों को भी आप जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी भी क्षमता या फिर उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, आप उसी तरीके से उन्हें उर्वरक और खाद देते जाएं। और इसके बाद मैम, बागवानी जब हम करते हैं तो किस प्रकार के पौधों का चुनाव हमें करना चाहिए?
1: देखिए पौधे लगाने की विधि तो मैंने बताई आपको, उसका उर्वरक में क्या, लेकिन पौधे किस तरह का चुनाव करें पौधे लगाने के लिए, मैं आम और लीची के संदर्भ में ही अभी बात करूंगी क्योंकि सारी चीजों को एक साथ समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है।
0: जी जी,
1: तो मैं आम और लीची को ही संदर्भ में बात करना चाहूंगी। जैसे आम के पौधे आप लेने जाते हैं तो वो 3 फीट से छोटा नहीं होना

0: चाहिए, 3-4 फीट का पौधा होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पौधे जो हैं वो फील्ड में जाकर के लगने में परेशानी होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हों, स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ तक हो सीधा होना चाहिए, उसकी टहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जिन किस्मों का आपको आप लेना चाहते हैं पौधा उसी किस्म का होना चाहिए। तो इसके लिए मैं किसान भाई आपको ये कहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमेशा जो है रजिस्टर्ड नर्सरी या सरकारी नर्सरी से ही पौधे लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आम्रपाली ले गया और 7 साल के बाद पता चला कि उसमें जो है वो दूसरे किस्म के फल आ रहे हैं। तो किस्मों की सुनिश्चितता करने के लिए आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधे लें, स्वस्थ पौधे लें, सही उम्र के पौधे लें, और तभी आपका जो है वो बगीचा में पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और फल अच्छे होंगे और आपके मनचाहे किस्म भी मिल पाएंगे।
1: तो बहुत अच्छी बात कही किसान भाइयों, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद मैम, जस्ट अब हमने बागवानी कर ली, पौधे लगा लिए हैं, तो इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाए?
0: देखिए, देखभाल में आपको सबसे पहले तो पोषण की है, फिर सिंचाई आती है। हमारे यहाँ जो है मध्य जून से लेकर के लगभग अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, उसमें आपको अलग से सिंचाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद अगर उस फल वृक्ष में जिसमें कि फल नहीं लगने शुरू हुए हैं उसमें आप नियमित रूप से पानी दें, सप्ताह में आप जरूर पानी दें, अगर ठंडे के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में आप हर सप्ताह में उसमें नियमित रूप से पानी दें, ताकि उसके उसको बढ़वार बनी रहे। जब आपका वृक्ष फलन में आ जाता है, यानी कि 4 से 5 साल के बाद वो फलन में आ जाता है लगभग, उस समय आपको आम और लीची के पौधे में नवंबर दिसंबर के महीने में पानी ना दें। अगर उस समय आप पोषण और पानी देंगे तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके और पत्तियां निकलनी आरंभ हो जाएंगी और वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के महीने में आम और लीची के पौधों में सिंचाई ना करें, पोषण ना दें, इसका बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कीट व्याधि भी लगते हैं, तो आप नियमित खेत उस बगीचे की सफाई रखें, टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उसको काटें, बहुत ज़्यादा घने बगीचे ना होने दें, और कीट व्याधि का नियंत्रण सौ समय करें, ताकि आपको ज़्यादा फैलने ना पाए, ज़्यादा आपको नुकसान ना हो।
1: तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप फल के वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में मैम कहा, साथ ही किस्मों के बारे में किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए पौधों के किस्मों का उनके बारे में मैम ने कहा, नए पौधे लगाने की विधि के बारे में कहा, इसके बाद हमने जाना कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और इसके उपरांत देख रेख कैसी होनी चाहिए। तो मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद आपको भी।
1: और आप सभी को मैं किसान भाइयों आशा करती हूँ आप सभी से कि मैम के दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और अपनी बागवानी को अच्छे तरीके से करेंगे और एक सफल किसान बनेंगे, साथ ही एक अच्छा फल आप बाजार में बिक्री के लिए ले जाएं और हमें भी खिलाएं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही ठंडी हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना।

अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर ले और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्रीयानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूल

0: होती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए, तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर

बन गया और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहां लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना, तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना, तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है, यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर, जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना। मुगल कालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा, भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।

0: 11 दोस्त।
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के

0: आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं कोदो मिलेट के बारे में। कोदो मिलेट जो कि काफी फायदेमंद होता है किसान भाई बहनों के लिए भी और जो उसका उपयोग करते हैं उनके लिए भी। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कोदो मिलेट की खेती की जाती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहला सवाल कि क्या कोदो एक जलवायु अनुकूल फसल है?
7: कोदो बिल्कुल ही जलवायु अनुकूल सी फोर क्रॉप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्री अन्य फसलों में कोदो मिलेट्स भी एक महत्वपूर्ण श्री अन्य या पोषक अनाज अथवा मोटे अनाज की फसल है। ये सभी मोटे अनाज या कंदन फसलें या पोषक अनाज या फिर हम श्री अन्य की फसलें कहें, ये सभी के सभी जलवायु अनुकूल है, क्योंकि इन सबको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। सुखाड़ की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन दे जाती हैं और साथ ही साथ कम उर्वर जमीन में भी इनका उत्पादन मिल जाता है। उच्च तापमान पर भी ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक लेवल पर जल की कमी हो रही है, सुखाड़ की स्थिति आ रही है, तापमान का बढ़ना आप लोग जान ही रहे हैं, तो ऐसे ही समय में श्री अन्य फसलों का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों सिचुएशन साथ साथ रहता है। साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्वानुमान दिया गया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि ई एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात विगत वर्षों की तुलना में कम हो रही है और अनुमान है कि इस वर्ष 40% तक बरसात में कमी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ये जो श्री अन्य की विभिन्न फसलें हैं, सावा, कोदो, कौनी, चीना, ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और निश्चित तौर पे किसान भाइयों के लिए एक लाभ की लाभकारी फसल हैं।
5: जी सर, अगर हम अब बात करें कि कैसे कोदो मिलेट की खेती करनी चाहिए और कब करनी चाहिए?
7: देखिए, कोदो मिलेट की खेती हमारे किसान भाई लोग बहुत परंपरागत तरीके से बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। हम 1960 के बाद ही गेहूं चावल पर निर्भरता डिपेंड किए हैं, तो ये कोई नई फसल नहीं है, ये प्राचीन फसल है। लेकिन चूंकि गेहूं और चावल की उत्पादकता ज़्यादा मिलने से ये सभी फसलें विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि बरसात में कमी हर जगह होने लगी है, हर रीजन में बरसात कमी होने लगी है, तो वहाँ इन फसलों का महत्व बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोदो मिलेट को अपने बिहार राज्य की बात करें तो जितने भी किसान भाइयों की ऊपरी ज़मीन है जहाँ जल जमाव नहीं हो पाता है, ऊपरी और मध्य जमीन में, हम कोदो मिलेट को बरसात शुरू होने से या

0: जो कहा कि 15 जून से लेकर के अगर हम 15 जुलाई के बीच में करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद खेती साबित होती है। इसके लिए हमें खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार 2 से 3 बार जुताई किया हुआ खेत ज़्यादा सही रहता है। हालांकि आजकल हम लोग इन सभी मिलेट फसलों को जीरो टिल विधि से भी बुआई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो किसान भाइयों के लिए अपना ऑप्शन है, जीरो टिल मशीन है तो जीरो टिल से भी बुआई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 बार जुताई करके पट्टा चलाने के बाद खेत तैयार हो जाता है। उसमें खाद की मात्रा अभी जो हम बताएंगे उसको डाल करके इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी समय मिले कर लेना चाहिए। अब बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि जितने भी हमारी ये मिलेट की फसलें हैं इनको धान की कंपेयर में जस्ट आधी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। कोदो मिलेट को भी कहें तो किसान भाई लोग आप अपने खेत में जितना धान के खेत में खाद देते हैं उसका जस्ट आधा देना है इसमें, आधे खाद में और बिना सिंचाई के भी ये खरीफ में आराम से फसल आपको प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है कोदो मिलेट। तो अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत पड़ती है। अब जो किसान भाई लोग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एक हम मोटी मोटा बता दें कि आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बोरा यूरिया, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और एक बोरा DAP, आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें, जबकि नाइट्रोजन यानी जिसको हम यूरिया के रूप में दे रहे हैं हमने बताया एक बोरा यूरिया पर्याप्त होता है जो 45 किलोग्राम की होती है, तो यूरिया की मात्रा 2 बार में देना है। पहला बुआई के 20 से 22 दिन पर जब इसमें कल्ले यानी टिलर निकलना शुरू करते हैं, दूसरा बुआई के करीब 55 से 60 दिन पर जब इसमें बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं। चूँकि कोदो मिलेट जनरली 100 से 105 दिन की फसल है तो नाइट्रोजन को लगभग कम से कम 2 बार में देना आवश्यक हो जाता है जिससे कि नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो जितना आप अपने धान में खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसका लगभग आधा मात्रा ही इसमें देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसका बीज दर का, तो प्रति एकड़ की बात करें तो केवल 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है प्रति एकड़ के लिए। बुआई की विधि की बात किया जाए तो इसको कतारों में अगर बुआई किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कतार से कतार की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं, अर्थात 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि बीज की गहराई उथली रहे। जैसे हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो 1 इंच से कम ही गहराई रखते हैं, मतलब गहराई किसी भी कंडीशन में 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा जमाव होता है। तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना होता है जब हम मशीन से बुआई करते हैं, किसी कारणवश हमारा सीड ड्रिल 1 इंच से ज़्यादा गहराई में बो रहा है तो दिक्कत होता है, उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि जब हम सीड ड्रिल से या जीरो ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हों तो हमारा 10% बीज जमीन पर दिखना चाहिए। अब 10% बीज अगर जमीन पर इक्का दुक्का दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका गहराई सही है। अगर कोई भी बीज जमीन पर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप गहरा बो दिए हैं, फिर आपका जमाव नहीं होगा। तो इसलिए एक विशेष सावधानी देना है कि गहराई 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रखें, किसी भी कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न बोएं। अब बात आती है इसमें
1: उत्तम प्रजातियों की। जी सर,
0: क्योंकि हम अगर परंपरागत प्रजातियां लेते हैं तो उसका उत्पादन कम है। तो कोदो की अभी हमारी यूनिवर्सिटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय अभी हम लोग के पास कोई अपनी प्रजाति नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर की प्रजातियों को पिछले 3 वर्षों में यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें इंदिरा कोदो एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है। समझ लीजिए कि इंदिरा कोदो वन लगभग 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 12 क्विंटल दाने आपको प्रति एकड़ मिल जाते हैं मात्र 105 दिनों में। दूसरी प्रजाति है JK

0: 155। जेके 155 भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रजाति है और लगभग यह भी 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है, करीब 105 से 110 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी प्रजाति है जेके 439 और अगला है जेके 65। इन सब प्रजातियों का भी उत्पादन करीब 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं, इनका ही सिलेक्शन करें। तो इसमें इंदिरा कोदो 1 अथवा जेके 155, जेके 65, इन प्रजातियों को का चयन कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी इच्छुक हैं, वो अभी हम 20 किसानों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क 2-2 केजी बीज डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर इंदिरा कोदो 1 और जेके 155 का यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करा देंगे। आप इसको अपने खेतों पे लगाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करें।
1: जी सर, अगर अब हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार से किया जाए?
0: कोदो देखिए एक बहुत ही मतलब खरपतवार के प्रति सेंसिटिव फसल है। अगर हम बुआई के 15 से 35 दिन के बीच तक खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं, उत्पादन में 50-60% तक की गिरावट हो जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन का प्रति हेक्टेयर 500 से 800 लीटर पानी में आवश्यकतानुसार घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अब सक्रिय तत्व का मतलब है कि 30% का आता है, तो बाजार का प्रोडक्ट जो है 3.3 लीटर हो जाता है। तो आप किसान भाइयों के शब्दों में कहें तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लीटर पेंडीमिथिलीन जो बाजार का प्रोडक्ट है वो पर्याप्त हो जाता है। आवश्यकतानुसार आप 400 लीटर पानी में घोल करके, या आप पानी कम भी कर सकते हैं, 200 लीटर में भी घोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ड्रोन से करेंगे तो मात्र 50 लीटर पानी में ही हो जाएगा, लेकिन आपका दवा जो है प्रति एकड़ 1.25 लीटर पेंडीमिथिलीन पड़ना चाहिए बाजार का प्रोडक्ट। तो इसे बुआई करके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए खेत में, इसे अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D 58% का रसायन लिया जा सकता है, जिसका लगभग 25 ml दवा प्रति टंकी पानी में ले लिया जाए, या यूं कहे 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप व्यवहार करें तो आ जाता है करीब 24 से 25 ml प्रति टंकी, टंकी जो 15 लीटर की होती है उसे करिए, प्रति एकड़ लगभग आपको 10 टंकी पानी देना जरूरी हो जाता है। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं, फील्ड में अन्य प्रकार के खरपतवार जो बच जाते हैं उसको हाथों द्वारा निराई करके समाप्त किया जा सकता है।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाई बहनों को 2 किलो बीज मुफ्त में दे रहे हैं,
0: जी
1: तो इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए।
0: इसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। तो इस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के तहत हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें हम जो अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं का बीज किसान भाइयों को देंगे। तो जो जेके 155 है उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, इंदिरा कोदो 1 का बीज भी उपलब्ध है। तो लगभग 20-25 किसानों को भी हम फ्री में, जो पहले आएंगे पहले ले जाएंगे, 2 किलो बीज हम दे देंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड किसान हैं वो बिहार सरकार के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी बीज प्राप्त कर लेंगे, वहां भी फ्री में बीज मिल जाएगा। और वहां एक सुविधा और है, बिहार सरकार मिलेट उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ उनके खाते में इनपुट के रूप में पैसा दे रही है और 2,000 रुपये का ऑलरेडी इनपुट दे देती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार सरकार प्रति एकड़ आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेट उगाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दे देती है, जिससे आपका इसके प्रति रुझान बढ़े। तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।
1: सर, किसान भाई बहन क्या कैसे मतलब बीज प्राप्त कर सकते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ विश्वविद्यालय
0: में आकर के, मेरे यहाँ भी आकर के बात कर सकते हैं, या डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म में जाकर के वहाँ से भी बीज ले सकते हैं।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई कोदो मिलेट के बारे में। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

0: ഉന്നത് കൃഷി.
1: നമസ്തേ ക്ലാസ്, ടി ബി കോ ഹരാനെ കി ക്ലാസ് മേ ആപ്കാ സ്വാഗത് ഹൈ. ഓർ ആജ് കി ക്ലാസ് മേ ഹം സീഖേംഗേ കി കൈസേ ടി ബി പേഷ്യന്റ്സ് കെ സാത്ത് പേഷ് ആനാ ചാഹിയേ, ബിൽക്കുൽ ഏക് ദോസ്ത് കി തരഹ, ഹൈ നാ ടീച്ചർ ജി?
2: റൈറ്റ് സർ, ആപ്നെ ബിൽക്കുൽ സഹി കഹാ, ക്യൂംകി ടി ബി കാ ഇലാജ് സംഭവ് ഹൈ. ടി ബി ഛൂനെ, ഹാത്ത് മിലാനെ സേ നഹീ ഫൈൽതാ. ടി ബി മരീസോ സേ മിലായെ ദോസ്തി കാ ഹാത്ത്, നാ കരേ ഭേദ്ഭാവ്.
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है. तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं. देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
3: देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार.
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ.
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ.
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ.
5: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है.
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in.
8: हर घर सूर्य घर.
9: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक.
0: उन्नत कृषि.
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी. किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से. सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
11: धन्यवाद उमा जी. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है. आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए. सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है.
10: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
11: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं. तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे. तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद

0: आप फसल को लगा सकते हैं।
1: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
0: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
0: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहाँ जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नबी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भुट्टे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भुट्टा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर जब हम

0: बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिमा, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
0: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है, तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें, तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है,

0: अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरा रहता है बाद में भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें,

0: कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये वो ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको दो तीन चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इसे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें, कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं, 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।

0: आए।
1: क्या क्या क्या
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जोशी यानी

की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च अगाध गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि

0: विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हम बात करने वाले हैं कीट पतंगों के बारे में। तो आप सभी को बता दो किसान भाइयों कि आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं, और ऐसे में चुनौती भरा काम आपके लिए हो जाता है कि आप अपने धान के फसलों को इन कीट पतंगों से कैसे बचा कर रखें। तो इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास कीटों का पहचान हो और उनके रोकथाम के लिए पूरी जानकारी हो। तो आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SN राय, मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
2: थैंक यू मैडम।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, और इसके इनसे जो बचाव है उनके क्या क्या तरीके हैं, या फिर किस तरीके से हम इन कीट पतंगों से बच सकें, अपने धान के फसलों को बचा पाएं।
2: धान में लगने वाले प्रमुख कीट में मधुआ कीट, तनाछेदक कीट, गंधी कीट, राई सिस्पा, सैनिक कीट, धान की बभनी, धान का केसवर्म, धान का लपेटक, धान का पतंगा आदि कीट प्रमुख हैं। कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकियां एवं कीटनाशियों के संबंध में जानकारी आवश्यक है। इसे उचित समय पर कीटों को रोकथाम किया जा सकता है। पहला कि धान की तनाभेदक कीट मादा पतंग हल्के पीले रंग का उजला कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल को बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों पर गुच्छे में रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शिशु, जिसको शिशु कहते हैं, पत्तियों को पर चलकर पौधों की बढ़ती कोमल को बेधकर तने में घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फल स्वरूप तना सूख जाता है। इसे डेड हार्ट या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती है, तना बेधक कीट का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधन में इस कीट के बचाव हेतु पौधों की रोपाई के समय पौधों के पत्तियों के ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रोपाई करें ताकि इस कीट के अंडे मुख्य खेत में न जा सके। पौधे रोपाई से पहले अंडों को क्लोरोपाइरीफॉस, जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 6 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तनाबेधक से बचाया जा सकता है। तनाबेधक के वयस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तनाबेधक कीट को अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें। तनाबेधक के आर्थिक क्षति होने पर काटा फाइडोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन 3G का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें।

0: असिंचित दशा में कटाप हाइड्रोक्लोराइड 25 एसपी दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोटोफॉस 36 एसएल दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 ईसी दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए यदि आप नैपसेक या गटोर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। धान का मधुआ कीट, यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के धान के पौधे के तने के रस चूसते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती हैं एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था को हॉपरबर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान के ऊपरी भूमि की अपेक्षा निम्न भूमि धान पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के पौधों को तनों से रस चूसता है जिससे पौधे सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप पौधों में वृद्धि की अवस्था एवं पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है जो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक की क्षति होती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। इस मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। प्रबंधन, प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपाई करने से इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसकी प्रकोप अधिक हो उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा अनुसार ही करना चाहिए। अधिक नेत्रजन का प्रयोग करने से इस कीट का बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों के प्रति हिल 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे तभी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। तरल दवा बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 17.8 एसएल 250 मिलीलीटर, थायोमिथोएक्जेम 25 WG दवा का 250 ग्राम या मोनोक्रोटोफॉस 36 एसएल दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुँचे।
1: और सर, आपने अभी बताया हमें कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि कीट पतंगों का पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, और आपने बताया तना बेधक के बारे में, तो आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हल्के पीले रंग का कोई अगर कीट दिखता है आपको तो समझ लें कि वो तना बेधक कीट है, और उसके उपचार के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके अलावे अगर इसके उपचार की बात करें तो पौधा रोपाई से मुझे लगता है कि अच्छा उपचार मिल जाएगा इसका डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि धान का मधुआ कीट, और इसके पहचान के लिए आप ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं तो आप समझ लें ये धान का मधुआ कीट है, और इनके प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आगे डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावे भी क्या कोई और कीट हैं जिसे हमारे किसान भाई पहचान सकें और उनके रोकथाम के लिए प्रबंधन कर सकें, तो आगे आप बताना चाहेंगे कुछ और बातें।
0: इस कीट के अलावे गंधी कीट, यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा होता पाया जाता है। इस कीट के एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जिसे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप पौधों की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। व्यस्क मादा पीले रंग का 25 से 30 अंडे पत्तियों पर एक कतार में देती है। ये अंडे 6 से 7 दिनों में

0: खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। यदि खरपतवार साफ कर लेते हैं तो इसे कीट का प्रकोप कम होगा। खेत में चार प्रकाश प्रपंच, जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत के चारों ओर से घास को साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालॉक्स डस्ट या मलाथियन 5% डस्ट के दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में करें। पत्र लपेटक कीट, इस कीट के भारत में कुल चार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षतिकर पाई गई है। इसका प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है। इसके पंखों पर काली धारियां होती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों के सिराओं या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में उसकी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ लेती हैं और अंदर ही अंदर उसके हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां धान की पत्तियों को सफ़ेद, सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु अब्लिक लार्वा अवस्था में क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन, खेत के मेड़ पर उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की जनसंख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, इसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। ट्राइकोग्रामा को देने के लिए 6 बार एक सप्ताह के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करें। 10% पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट का कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोफोस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफोस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सैनिक कीट, यह कीट इसके शिशु में हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक कीट गोधूली के बाद रात में पौधों को चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं। यह कीट के द्वारा आक्रमण होने पर या पकने के पूर्व फसल के बालियों को कटी हुई दिखाई देती है। अधिक आक्रमण होने पर पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यह कीट सैनी के समान रात में आक्रमण करते हैं एवं दिन में खरपतवार या पौधों के निचले भाग पर छिप जाते हैं एवं रात में अधिक आक्रमण करते हैं। प्रबंधन, धान की कटाई के बाद पुआल एवं खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। धान को कटते ही हल चलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए जिसे शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो उस खेत में मोनोक्रोटोफॉस दवा का 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आप सभी को बताया, इसके अलावे यानी कि तना बेधक और मधुआ कीट के अलावे गंधी कीट होते हैं जो कि पतला और हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा पाया जाता है और इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसके अलावा इन्होंने पत्र लपेटक कीट के बारे में बताया, तो इस कीट में यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पाई जाती है

0: और इसके अलावा मैं बता दूं कि इनके पंखों पर भी काली जो धारियां हैं वो पाई जाती है। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो सारे प्रबंधन की बात करें, जितने भी कीट हैं उनके प्रबंधन की बात करें, तो सबसे पहले तो खरपतवार जो मेड़ों पर हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और क्योंकि उससे कीट पतंग जो हैं उनकी जनसंख्या में कमी आती है। तो आपके मेड़ों पर अगर खरपतवार हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा दें, नष्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी है हमारे किसान भाइयों को, इससे बहुत फ़ायदा और लाभ उठाएंगे हमारे किसान भाई और बहन। और आशा करती हूं मैं कि डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अगर आप अपनाएंगे तो अपने धान की फसल को इन कीट पतंगों से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी, कुछ अलग विषय के साथ, कुछ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी एक बहुत ही पारंपरिक आय का तरीका है, बहुत ही पारंपरिक व्यवसाय है, लेकिन आजकल के बच्चे इस फील्ड में भी अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही है खेती बाड़ी, और देश की लगभग 50% आबादी खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। और ऐसे में जब नए लोग खेती बाड़ी से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ती है, आधुनिक व्यवस्थाएं जुड़ती है, आधुनिक तकनीक जुड़ते हैं, और इससे किसान भाई बहनों को बहुत फायदा भी होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि खेती बाड़ी क्या है। खेती बाड़ी का मतलब होता है फसल उगाना और पशुपालन करना। इसमें मिट्टी की तैयारी, बीज बोना, सिंचाई, खाद डालना, फसल काटना और पशुओं की देखभाल करना शामिल है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है, जैसा कि हमने आपको पहले भी
10: बताया कि इसमें नई तकनीकों का उपयोग बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि खेती के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि खेती के

0: कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि सामान्य खेती। इस प्रकार की खेती में किसान अपने परिवार के लिए ही फसल उगाते हैं और जाहिर सी बात है इसमें अधिक मुनाफे की अपेक्षा नहीं की जाती है। वहीं कमर्शियल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक खेती में बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती है और बाजार में बेची जाती है। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें शामिल है। वहीं खेती के अगले प्रकार की बात करें तो आजकल इस प्रकार की खेती की बहुत डिमांड है और नए लोग जो खेती बाड़ी से जुड़ना चाहते हैं वो भी खास तौर से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना चाहते हैं, यानी कि जैविक खेती करना चाहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती से पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और साथ ही हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड हस्बेंड्री। इसमें फसल उगाने के साथ साथ किसान भाई बहन पशुपालन का भी काम करते हैं। ये उनके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाता है। वहीं अब हम आगे जानते हैं कि आधुनिक खेती कैसे किया जा सकता है। पुराने समय में पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब नई तकनीकें हमारी खेतीबाड़ी को आसान बनाती है तो क्यों ना आधुनिक खेती अपनाया जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। पुराने तरीके में सिंचाई के दौरान पानी की काफी बर्बादी हो जाती थी, लेकिन ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन के दौरान पानी की बूंदें पौधों की जड़ तक पहुंचाई जाती है और जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल कम होती है। वहीं अगले तरीके की हम बात करें तो अगला तरीका है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि इस तकनीक में मिट्टी के बिना पानी में पोषक तत्व मिलाकर पौधे उगाए जाते हैं और ये शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर जगह घर बन रहे हैं और ऐसे में मिट्टी बहुत कम देखने को मिलती है, तो मिट्टी के बिना ही पानी में भी बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं और ये भी युवाओं के द्वारा अपनाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगले तरीके की हम बात करते हैं यानी कि कीट प्रबंधन यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट। कीटनाशकों का जो अधिक उपयोग है वो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जब जैविक कीटनाशकों और प्राकृतिक तरीकों से तैयार किए गए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है तो इससे कीटों को नियंत्रित बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया जाता है और साथ ही कोई भी नुकसान नहीं होता ना फसल को ना हमारे शरीर को। अब हम जानते हैं कि फसल चक्र क्या है यानी कि क्रॉप जायरेशन क्या है। कई बार जानकारी के अभाव में किसान भाई बहन क्या करते हैं कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं और इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे में फसल चक्र अपनाकर किसान भाई बहन मिट्टी को पोषण दे सकते हैं, जैसे कि धान के बाद आपने गेहूं उगा लिया, फिर दलहन उगा लिया, या तो फिर मक्का के बाद सोयाबीन बो दिया आपने, उसके बाद गन्ना बो दिया। तो अलग अलग तरह के फसल आप जब अपने खेत में उगाते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रहती है और फसल चक्र अपनाने से कीटों का प्रकोप भी कम होता है, यानी कि फसलों को बहुत फायदा होता है इससे। अब तक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन खेती बाड़ी में आने वाली चुनौतियों के बारे में बातें नहीं की है। कई सारी चुनौतियों का भी सामना किसान भाई बहनों को करना पड़ता है, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या होती है मौसम की अनिश्चितता। या तो बारिश का ना होना या फिर बहुत ज्यादा बारिश का होना फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बाजार तक पहुंच की कमी भी किसान भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। वहीं हम बात करें तो पानी की कमी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से सिंचाई में भी दिक्कत होती है। अब इसके लिए सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी है और इसके समाधान भी हैं। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए खेती बाड़ी बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो भारत सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हुई है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान। इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगली योजना की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC, इसमें कम ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मिल जाता है। अगली योजना की बात करें तो ये है ई नाम। ई नाम एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंडी है जहां किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। बाजार तक पहुंच की कमी जैसी चुनौती को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को जैविक खेती, जल संरक्षण और सहकारी समितियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए और इसके लिए आप हमारे लगातार कार्यक्रम को भी सुन सकते हैं, जिसके जरिए आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक।

0: लिए जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर,
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखार पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और साथ ही हम आपको बता दें कि उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज एक विषय लेकर फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ। और

0: विषय है गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओं, आज गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हम जानेंगे और इसमें कीट प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रंजीत कुमार। मैं आपको बता दूं, ये सहायक प्राध्यापक हैं सहकनीय वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों के मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
1: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं इस समय, उसमें से सबसे प्रमुख कीट है हीरक पृष्ठ पतंगा, दूसरी कीट है माहू, तीसरा कीट तंबाकू की सूढ़ी जिसको टोबैको कैटरपिलर कहते हैं, और चौथे कीट है जिसे हम चना के फली छेदक कीट कहते हैं। इन चारों कीटों का मुख्य रूप से गोभी वर्गीय फसल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, उसके बाद जो सलजम होती है, इन सारी फसलों पर इन कीटों का प्रकोप बहुतायत हमारे प्रदेश में देखने को मिलता है।
0: डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों की हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किन किन कीटों से होता है इसे?
1: जी किसान भाई, आप सभी गोभी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और हमारे प्रदेश में बहुतायत तौर पर गोभी वर्गीय फसल उपजाई जाती है, और इसमें जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें तंबाकू की सूढ़ी, हीरक पृष्ठ पतंगा और चने का फली छेदक कीट। सामान्य तौर पर आप सभी किसान भाई देखे होंगे कि कभी कभी पूरी पत्तियां काट करके कीट पूरा उसको पेपर जैसा बना देता है, पूरा छलनी जैसे जाली नुमा संरचना बन जाती है। ये शुरुआत की अवस्था होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है, पत्ता गोभी की अगर बात करें तो पत्ता गोभी में पूरे छेद छेद से बन जाते हैं और वो मानवीय उपयोग के लायक नहीं बच पाता है। फूल गोभी की अगर बात करें तो फूल गोभी के ऊपर इन्हीं सारे पिल्लू के द्वारा इस तरह से खान लिए जाते हैं कि वो खाने के अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसकी जो मादा होती है पत्तियों के ऊपर, और गोभी की जो निचली भाग होती है, जो जमीन से थोड़ा जड़ से ऊपर की भाग होती है, उन पर ये मादा अंडा देती है। अंडा देने के 4 से 5 दिन के बाद ये पिल्लू बन जाते हैं, और पिल्लू की जो अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा क्षतिकारक होती है और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है और उनको मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और इनकी पिल्लू उस इस तरह से नुकसान करने लगती है, और साथ ही साथ उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो मल मूत्र वो पिल्लू त्यागते हैं, उस गोभी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे देखने में भी खराब दिखने लगता है और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये पिल्लू कोसा की अवस्था में आते हैं तो मिट्टी के अंदर कोसा की अवस्था में या सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं और बाद में फिर तितली बन करके निकलती है। इस तरह से उनके जीवन चक्र चलते रहते हैं। अगर हम बात कर लें कि हीरक पृष्ठ पतंगा का, तो किसान भाई सबसे बढ़िया पहचान इसकी ये है कि हीरक पृष्ठ पतंगा के जो व्यस्क कीट होता है नर और मादा, इसके पीठ पर चमकती हुई धारी बनी रहती है। आप उसे गौर से अपने खेतों में देखेंगे तो ये लंबी लंबी सी जो व्यस्क है इसके पीठ के ऊपर चमकता हुआ पीले रंग का धारी बनी रहती है। भूरे रंग के कीट के ऊपर पीले रंग की धारी बनी रहती है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। और तंबाकू की सूढ़ी की बात करें तो इसके जो व्यस्क कीट होते हैं, इसके पंखों के ऊपर गोल गोल संरचना बनी रहती है, जो धूसर काले रंग के होते हैं और उस पर पीले चमकीले रंग की गोल संरचना बनी रहती है, तो इससे इन कीट की पहचान कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि कौन कौन से कीट जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की, तो गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें हम?
1: गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन करने से हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो बिचड़ा गोभी के गिराएं, उसी समय सर्वप्रथम बीज का शोधन करें। बीज का सामान्य तौर पर हमारे किसान कवकनाशी फफूंदनाशी दवाइयों के द्वारा बीज का उपचार कर लेते हैं, बीज का शोधन

0: कर लेते हैं। हम किसानों को आज इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि गोभी के बीज को कीटनाशी रसायन के द्वारा भी शोधित किया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया जो प्रयोग करने के लिए आता है गाउचो नाम की एक दवाई होती है, 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से मिला करके उससे हम बीज का उपचार करके अगर लगाएं तो स्वस्थ हमें पौधा तैयार मिलेगा और फिर उसे हम खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई इन बात का ध्यान रखें और उसके बाद जब पौधे को खेतों में लगा देते हैं तो लगाने के बाद आप एक फेरोमोन ट्रैप होती है जिसको गंध प्रफास कहते हैं, इन कीटों को जो मैंने नाम आपके समक्ष बताया इन कीटों के गंध प्रफास बाजार में उपलब्ध है, इसको आप खेतों में प्रयोग करेंगे तो इससे आपको पता चलेगी कि किस समय में कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है और उसके हिसाब से आप कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो ये कुछ बातें हैं इनके समेकित कीट प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, अगर मैं इनमें प्रयुक्त होने वाली कीटनाशी रसायन और पेस्टिसाइड के बारे में पूछूं तो कौन कौन से हैं वो भी बता दें।
0: जी, सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि किसान कोई भी कीटनाशी रसायन ले आकर के छिड़काव कर देते हैं। हम किसान भाई आप सबको ये सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हीं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें जिसको वैज्ञानिक के द्वारा अनुमोदन किया जाता है और जितनी मात्रा में अनुमोदन की जाती है उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि कीटनाशी रसायन की कम मात्रा और ज्यादा मात्रा दोनों ही घातक होती है। अगर कुछ आपके समक्ष हम बात करें कि कौन कौन से कीटनाशी रसायन है जिसका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है जो हमारे वातावरण के लिए सुरक्षित हो, हमारी फसल के लिए सुरक्षित हो, हमारी मृदा के लिए, हमारी वायु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, तो इनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे फ्लूबेंडिया माइट 39.5 SC के नाम से एक कीटनाशक रसायन आती है जो बाजार में फेम के नाम से मिलेगी। 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई नोवा ल्यूरान के नाम से बाजार में मिलती है, इसको आप 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी दवाई क्लोरांट्रा नीली प्रोले जो कोरोजन के नाम से बाजार में मिल जाएगी, इसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। उपर्युक्त कीटनाशक रसायनों के जो बाजारू नाम हम आपके समक्ष बताए हैं आपके उदाहरण के तौर पर ताकि आपको खोजने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर बायो पेस्टिसाइड का निर्माण करके उसको आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नीम की पत्ती है, नीम का तेल है जिसको आप पीस करके नीम के पत्ती को पीस करके उसको पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो जो भी कीट है उन कीट का प्रकोप आपकी फसल में नहीं आएगा। दूसरा है नीम का तेल, नीम का तेल 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करने से ऐसा देखा गया है कि कीटों का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है और ये आप अपने खेतों में घरों में तैयार कर सकते हैं।
1: तो ये कुछ बातें हैं गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन को लेकर जो कि आपको ध्यान रखना है इन बातों पर किसान भाइयों। तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा आज के इस वार्ता से और इसके साथ ही अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं

0: समझ पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
6: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
7: See you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर,
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी

आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जो श्री यानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च अगाध गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दे, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई इन किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं।

0: और सही उपचार ले।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितनी तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी

नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है तो फिर ठीक है। आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी। फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं। ये गलत है, आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहें।

0: अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज़ें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं, आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं। तो अपने आसपास के लोगों को देखिए और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा, तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही।

0: को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है सोयाबीन की। हम बात करें सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। जहाँ हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूं की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है। इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
1: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए, तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार एक बार निकोनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है। पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में एक बार डाइमिथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
1: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है, और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वेराइटी है JS 335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली, 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी

0: नहीं एवं चटके हुई होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC-12 जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1 जिसे RAUS-5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH-93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH-97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH-95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरन एवं पर्निया बीमारी पत्ती चूसक कीटों पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24 यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल बीटल सेमी लूपर तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग चारकोल रोट तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज़ हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्य क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये सस्य क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जरे को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने के अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाली किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें।

0: रेजिम या थीरम के 2 ग्राम किलोग्राम बीज का 24 आवर्स 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बखरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उथली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्लोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलो या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रभावित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स

0: 40 ग्राम या ट्राइफोजोब्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे ख़त्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्विनोलोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। एक इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग के प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मैथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजीम 50 WP या थाईफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 PPM 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थायमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी। फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने

0: दांत ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज हम विषय लेकर आए हैं हरी खाद से मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। तो इसके बारे में आज विस्तार तौर से आप सभी को जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद। मैं आप सभी को बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
9: सर, सबसे पहले तो ये हरी खाद किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए।
10: मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों की खेती चल रही है उसमें काफ़ी सघन खेती हो रही है और उसके वजह से खेत को रेस्ट नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है कि खेत को कुछ दिनों के लिए आराम दें ताकि खेत की जो उपजाऊ क्षमता है उसका जो दोहन हुआ है उसकी भरपाई कर सके। तो सघन खेती और इंटेंसिव क्रॉपिंग के वजह से ये आवश्यक हो जाता है कि जो जिन चीज़ों का क्षरण खेत के द्वारा खेत के से हुआ है, जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया है, अवशोषित किया है, उसकी कुछ हद तक भरपाई कर सकें। तो भरपाई करने का एकमात्र उपाय है कि अलग से हम खेत में वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो खेत की उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखे, उसमें जो पोषक तत्वों का लॉस हुआ है, क्षरण हुआ है, कमी हुई है, उसको मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए खास करके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर का जो मुख्य स्रोत है वो है हरी खाद। हरी खाद का मतलब है कि जो मैक्सिमम फोलिएज वाले, जिनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, शाखाएं ज़्यादा होती हैं, और उसके माध्यम से हम खेत में या तो

0: उसको बाहर से ला करके या खेत के अंदर ही उसको पैदा करके उस खेत में उसको समावेशित कर देते हैं, और जिसके वजह से जो ग्रीन बायोमास है वो खेत को प्राप्त होता है और बाद में सर करके ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ बहुत सारी जो पोषक तत्व हैं उसको मुहैया कराता है। तो हरी खाद मुख्य रूप से दलहनी फसल के रूप में जो फोलियज वाले पौधे हैं जैसे सनई है, ढैंचा है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मूंग है उसका इस्तेमाल करते हैं, उड़द का इस्तेमाल करते हैं, और जो दलहनी फसल नहीं है उसका भी विशेष तौर पर जब ऐसी कमी हम महसूस होती है तो उसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे सरसों का पौधा है तो इसका भी हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं।
1: इसके फायदों के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ फायदे हैं हरी खाद के?
0: देखिए मैडम, इसके तो बहुत फायदे हैं और किसान भाइयों को मैं ये बताना भी चाहूँगा कि एकमात्र ये साधन है, संसाधन है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखने का, और कम से कम लागत में अगर मिट्टी की उर्वर क्षमता को आप बनाए रखना चाहते हैं, टिकाऊ बनाए रखना चाहते हैं, तो हरी खाद का आप प्रयोग करेंगे। और हरी खाद के लिए खास करके दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है, उसमें हमने पहले भी बताया कि जैसे सनई है, ढैंचा है, मूँग है, उड़द है, तो ये सारे जो दलहनी फसलें हैं, और इसमें खासियत होती है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित भी करते हैं और जड़ों में ये नाइट्रोजन को अवशोषित करके रखते हैं। तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि लगभग 78% नाइट्रोजन है जो मुफ्त में हमें उपलब्ध रहता है, और पौधा इन नाइट्रोजन को अवशोषित करके जड़ों में फिक्स कर देता है, तो हमारी नाइट्रोजन की मांग, जो फसल की नाइट्रोजन की मांग है वो कम हो जाती है। दूसरा, अगर हरी खाद का हम प्रयोग करते हैं तो खेत में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ है खेतों में, उसकी जो कमी हो रही है उसकी मात्रा बढ़ती है, उसके वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जो सॉइल का इरोजन है, क्षरण है, उसको भी ये हरी जो हरी खाद जब हम लगाते हैं खेतों में तो उसको भी रोकता है, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं बनी हुई रहती हैं, बरकरार रहती हैं, और साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण को अगर हम कहें कि जैविक विधि से एक अगर करना है तो हरी खाद एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है, उपाय है खरपतवार नियंत्रण करने का। तो इस तरह से हरी खाद के प्रयोग से कई एक प्रकार के फायदे हमारी मिट्टी को मिलते हैं, हमारे फसल को भी मिलते हैं।
1: अब बात करते हैं कि इसे किस रूप में कब उपयोग करना चाहिए।
0: मैडम, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हरी खाद को कब और किस रूप में प्रयोग किया जाए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हरी खाद को दो तरह से प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो जिस खेत में हमको हरी खाद का प्रयोग करना है उसी खेत में उस हरी खाद के रूप में जिस फसल को हम लगाने जा रहे हैं उसका हम बुआई उसी खेत में करेंगे, इसको बोलते हैं इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जब उस हरी वो जो हमारा हरी खाद वाला फसल है जैसे ढैंचा को उसी खेत में हम बुआई करेंगे और उसी खेत में फिर पलट देंगे, तो ये कहलाएगा इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जब ढैंचा को या सनई को या दूसरे हरी खाद को हम दूसरे खेत में लगाएंगे और फिर वहाँ से काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके दूसरे खेत में हम प्रयोग करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तब वो एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग कहलाएगा। तो इस तरह से दो तरह से हरी खाद का प्रयोग करते हैं, और सबसे जो इसका सुगम और आसान तरीका है हरी खाद के इस्तेमाल का, इसके लिए हम दो फसलों के बीच का जो गैप होता है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस पीरियड में खेत खाली भी रहता है। जैसे गेहूं, अगर हमारे यहाँ तो धान और गेहूं का फसल चक्र काफ़ी प्रचलित है, तो धान के बाद गेहूं लगाते हैं और गेहूं के बाद खेत या तो खाली रहता है या मूंग लगाते हैं। तो गेहूं कटने के बाद और पुनः धान लगाने के बीच का जो समय है, 2 से 2.5 या 3 महीने का समय, उसका प्रयोग करके हम हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हरी खाद को लगा सकते हैं। अगर हम मूंग लगा रहे हैं

0: तो मूंग की फलियों को तोड़ने के उपरांत जब एक दो बार हम फली को तोड़ लेते हैं और जब लगभग फली ना के बराबर आता है, तब उस मूंग के पौधे को उसी खेत में हम समावेशित करते हैं, डाल देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वो भी एक ग्रीन मैन्योरिंग है। और अगर हम चाहें कि ढैंचा लगा के अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, तो गेहूं की कटाई के उपरांत जब प्री मानसून रेन होता है, तो उस प्री मानसून के द्वारा जो नमी प्राप्त होती है, उस नमी का प्रयोग करके हम ढैंचा की बुआई कर सकते हैं खेतों में। और फिर 55 से 60 दिनों का जब वो पौधा हो जाता है, तब उसको फिर हम उसी खेत में कैजुअल के माध्यम से हम दबा सकते हैं या एमबी प्लाव के द्वारा उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो तरीके से हरी खाद का प्रयोग खेतों में करते हैं, और ऐसा करने से हमारी मिट्टी की उर्वर क्षमता, उपजाऊ क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है।
1: जी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के बारे में अभी बता रहे थे कि ये बढ़ जाती है, और पैदावार को हरी खाद भी प्रभावित करती है, तो कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
0: जी, हमने पहले आपको बताया है कि चूंकि हरी खाद में खास करके हम उन फसलों का प्रयोग करते हैं, हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि दलहनी फसल हो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता दलहनी हरी खाद जो है उसमें होती है, तो नाइट्रोजन हमको मुफ्त में मिलता है, जिसके वजह से नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। दूसरा, जब हरी खाद को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को उपलब्ध होता है, जिसके वजह से खेत के अंदर जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके वजह से बहुत सारी क्रियाएं जो एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसके वजह से मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं जो अनुपलब्ध फॉर्म में हैं, पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात कि जब ये ग्रीन मैन्योर हरी खाद जब सड़ता है, तो इसके सड़ने से दो तरह के एसिड निकलते हैं, और ह्यूमिक एसिड और फल्बिक एसिड। तो ये जो एसिड हैं, ऑर्गेनिक अम्ल हैं, जब इसके द्वारा क्या होता है कि जो फिक्स फॉर्म में पोषक तत्व हैं मिट्टी में, उसको घुला करके भी पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उस पोषक तत्व जो अनुपलब्ध रूप में है, उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है और पौधे उसको आसानी से ग्रहण करने लगते हैं, जिससे फसल जो हम फसल ले रहे हैं हरी खाद के बाद, उस फसल की उत्पादकता भी बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है, और हमारी मिट्टी की जो भौतिक गुण हैं वो भी सुधर जाते हैं। और साथ ही साथ चूंकि इसके व्यवहार से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है, तो जल धारण की क्षमता बढ़ने से मिट्टी में जो भी फसल हम लगाते हैं, उसको नमी की कमी नहीं होती है और उसको सुचारू रूप से नमी उपलब्ध होता रहता है, तो हमें पानी की भी बचत होती है। तो इस तरह से कई एक प्रकार से ये हरी खाद हमारे मिट्टी को भी मजबूत बनाते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और फसल को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है।
1: जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, आप हरी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बिना किसी हानिकारक तत्वों के। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, फ्रिक्वेंसी यही याद रखें, 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: 90.8 क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो

0: पक्षियों का शिकार।
1: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
1: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
1: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और अनुमान है कि आगे भी वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में आप धान की रोपाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। सुगंधित धान किस्मों जैसे कि भागलपुर, कतरनी आदि की बुआई कर लें और निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन करें ताकि जरूरत पड़ने पर इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सके। जोशी यानी की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई के 15 से 20 दिनों बाद निकौनी कर लें और मक्का में धनबाल निकलने के समय नेत्रजन का प्रयोग जरूर करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, मिर्च, अगाध, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। ध्यान रखें कि फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। जो केला की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे कि अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्मों जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई

किस्मों का चयन करें और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बौनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रति गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर रोक लगाएं। ध्यान दें कि गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए अगर जून महीने में टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त

अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं है तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दे, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं। ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए के अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश ओहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
2: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
3: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
2: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने

0: देश आप प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: उसे कह रहा हूँ,
3: देखिए, रखो। मुझे छोड़ दो, अंगूठी ले लो।
2: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
7: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
6: वहाँ अंगुलीमाल है।
7: हाँ प्रभु,
6: वो बहुत बड़ा डाकू है।
8: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
6: जाए।
8: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
6: हाँ प्रभु, ना जाएं, ना जाएं प्रभु, ना जाएं।

0: परम स्वागत है।
1: अरे मेरा स्वागत।
2: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुली माल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल से कहा,
0: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
3: ठीक है।

0: हो, फिर से वही लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया, वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए।

0: जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जगतीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
0: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के

0: कि इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
3: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
0: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी।
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी।
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डीफिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
4: डॉक्टर

0: धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
1: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनके मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है,